ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की चौथी तिथि, तदनुसार दिनांक 25 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। इस समय सवेरे के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमरीका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को

0: संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस।
4: एपिसोड नंबर 6।

तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस। स्वर थे वाणी जयराम के और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सुविचार, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आइए सुविचार के बाद सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये अगला गीत पेश है दिल अपना और प्रीत पराया फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर, यानी 531 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार साथियों, सुबह की इस प्यारी और शांत बेला में आपका दिल से स्वागत है आकाशवाणी जोधपुर पर। मैं हूं आपकी अपनी नीतू और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो धैर्य होने वाला है, यानी पेशेंस। एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ज़िंदगी में इसकी अहमियत बहुत बड़ी होती है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है। मोबाइल पर अगर कुछ सेकंड देर हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। सड़क पर ट्रैफिक मिल जाए तो गुस्सा आ जाता है। अगर मेहनत का परिणाम जल्दी ना मिले तो हम खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या जिंदगी सच में इतनी जल्दी जीने की चीज़ है? कभी सुबह का सूरज ध्यान से देखिए, वो भी

धीरे धीरे निकलता है। फूल भी धीरे धीरे खिलते हैं, बारिश भी एकदम नहीं आती। पहले हवाएं बदलती हैं, बादल आते हैं, फिर बूंदें गिरती है। प्रकृति हमें हर दिन धैर्य सिखाती है, लेकिन हम इंसान ही जल्दी में रहते हैं। कई बार जिंदगी हमें वहीं रोक देती है जहां हम भागना चाहते हैं, और शायद वहीं रुकना हमारे लिए जरूरी भी होता है। आज के इस पूरे घंटे में हम बात करेंगे सब्र की, उम्मीद की, और धीरे धीरे आगे बढ़ने की और जिंदगी को थोड़ा महसूस करने की। साथ होंगे बॉलीवुड के कुछ बेहद खूबसूरत और सुकून भरे गीत, जो दिल को भी छुएंगे और सोचने पर भी मजबूर करेंगे।

श्रोताओं, कई बार हम जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो परिणाम है वो हमारी उम्मीद के मुताबिक वो नहीं आते, या यूं कहूँ कि जल्दी नहीं आते। ऐसे समय में सबसे पहले हमारा धैर्य टूटता है। लगता है कि शायद हमारी जो मेहनत है वो बेकार जा रही है, लेकिन सच कहूँ जो मेहनत होती है वो कभी भी बेकार नहीं जाती। हर कोशिश, हर संघर्ष, हर इंतज़ार इंसान को अंदर से मजबूत बना रहा होता है। किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे पता होता है कि समय लगेगा, धूप लगेगी, पानी लगेगा, देखभाल करनी होगी, तब जाकर फसल तैयार होगी। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम अक्सर सिर्फ मंजिल देखना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी हमें सफर का महत्व सिखाना चाहती है। और श्रोताओं, जो लोग धैर्य रखना सीख जाते हैं वो छोटी परेशानियों से जल्दी नहीं टूटते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय जो है वो जरूर बदलेगा।

श्रोताओं, आजकल सोशल मीडिया की इस दुनिया में हम हर दिन किसी ना किसी की सफलता देखते रहते हैं। किसी को नई नौकरी मिली, किसी ने नया घर लिया, किसी की ज़िंदगी बहुत खुश दिखाई देती है और धीरे धीरे हम खुद की ज़िंदगी से परेशान होने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर इंसान की ज़िंदगी का समय अलग होता है। कोई जल्दी सफल हो जाता है, कोई देर से, कोई जल्दी संभल जाता है, कोई थोड़ा समय लेता है। लेकिन देर से पहुंचना असफलता नहीं होती। धैर्य रखने वाला इंसान अक्सर ज़िंदगी को ज़्यादा गहराई से समझता है, क्योंकि उसने इंतज़ार किया होता है, संघर्ष देखा होता है और खुद को टूटने से बचाया होता है। श्रोताओं, अगर ज़िंदगी इस समय आपकी परीक्षा ले रही है, तो हो सकता है वो आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बना रही हो। कभी-कभी भगवान भी हमें वही चीज़ देर से देते हैं जिसकी कीमत हमें समझनी होती है।

श्रोताओं, कुछ बातें जो शायद आपके दिल तक पहुंच जाए, जैसे सब्र रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही इंसान को मजबूत बनाता है। हर मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। अगर रास्ता लंबा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल नहीं मिलेगी। कई बार जिंदगी हमें रोककर कुछ सिखाना चाहती है। जल्दी में लिए गए फैसले अक्सर मन को परेशान कर देते हैं। और श्रोताओं, एक बात और, धैर्य सिर्फ बड़े सपनों के लिए ज़रूरी नहीं होता, रिश्तों के लिए भी ज़रूरी होता है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास इंतज़ार करने का धैर्य नहीं बचा। लेकिन रिश्ते समय मांगते हैं, समझ मांगते हैं और थोड़ा सब्र भी। अगर कोई अपना नाराज़ है तो तुरंत दूरी बनाने की जगह थोड़ा समय दीजिए। कई रिश्ते सिर्फ धैर्य की वजह से बच जाते हैं।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

दोस्तों, जो पुराने गीत होते हैं उनमें एक ठहराव होता है, एक सुकून जो धीरे से एकदम सीधे दिल तक उतर जाता है और शायद ज़िंदगी को भी उसी

ठहराव की जरूरत है। हर समय भागते रहना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को रोक लो और खुद को सुकून देना भी जरूरी होता है। सुबह की जो हवा है, चाय की खुशबू और पुराने गीत, ये छोटी छोटी चीजें भी जिंदगी को खूबसूरत बना देती हैं।

पुराने गीतों में जो सुकून था, शायद वो इसलिए भी आज नहीं क्योंकि उस समय जिंदगी थोड़ी धीमी थी। लोग बैठकर बातें करते थे, चिट्ठियों का इंतजार करते थे, परिवार के साथ समय बिताते थे। आज सब कुछ तेज हो गया है, लेकिन मन मन कहीं ना कहीं थक गया है। इसलिए कभी कभी जिंदगी को थोड़ा धीमा करना भी जरूरी है। सुबह की चाय आराम से पीजिए, पुराना गीत ध्यान से सुनिए, माँ बाप से थोड़ी देर बातें कीजिए, अपने बच्चों की छोटी छोटी बातें सुनिए। यकीन मानिए, सुकून बड़ी जो सुकून है वो बड़ी चीज़ों में नहीं, इन छोटी छोटी चीज़ों में ही छुपा होता है।

श्रोताओं, अगर आपके सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि हर सुबह जो है वो नई शुरुआत लेकर आती है और हर इंसान का समय अलग होता है। धैर्य रखिए, मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा कभी भी मत खोइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो खूबसूरत चीज़ें हैं ना ज़िंदगी में, वो थोड़ा सा इंतज़ार करवा कर आती हैं।

सब्र सुकून और पुराने मधुर गीत। उम्मीद है श्रोताओं कि आज की जो ये बातें हैं वो आपके दिल को थोड़ी शांति और नई उम्मीद दे पा रही होंगी। जिंदगी में धैर्य बना रहे क्योंकि जो समय है वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल और प्रोग्राम का नाम कुछ बातें कुछ गीत।

पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सब।

श्रोताओं, अगर इस समय आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत है, अगर आपको लग रहा है कि समय आपके खिलाफ है, तो खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि हर मौसम ज़रूर बदलता है, हर रात के बाद सुबह आती है और हर संघर्ष एक दिन कहानी बन जाता है। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा धैर्य रखने की, उम्मीद को कभी ना छोड़ने की और हमेशा चलते रहने की, क्योंकि कई बार ज़िंदगी के खूबसूरत जो जवाब होते हैं वो थोड़ा इंतज़ार करवा कर हमको मिलते हैं।

श्रोताओं, एक पुरानी कहावत कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, सब्र का जो फल है वो मीठा होता ही है, यह तो बात पक्की है। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करने के लिए सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर सब्र है तो आप किसी भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं।

मैं हूं आपकी रेडियो सखी नीतू और आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत आकाशवाणी जोधपुर पर। फिर मुलाकात होगी नई सुबह नई सोच और नए गीतों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, धैर्य बनाए रखिए और जिंदगी को प्यार से जीते रहिए।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय सवेरे के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री

0: शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर

0: नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
1: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर टेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमरीकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट

0: जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मोज जल डमरू मध्य खोला जाएगा, ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मोज खोलने के लिए सैद्वांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नॉर्थपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीयूईटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jayashankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these are

0: उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे। इस खास शुरुआत के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार। श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त और मेजबान हिमांशु अवस्थी और मेरे साथ मौजूद हैं
1: मनीषा जोशी बोहरा। दोस्तों, हर सुबह सूरज की पहली किरण अपने साथ एक नई सोच, नई दिशा लेकर आती है और साथ ही मौका देती है हमें जिंदगी में

0: कुछ बेहतर करने का, आगे बढ़ने का।
1: दोस्तों, मौका खुद को बेहतर बनाने का, मौका कुछ नया सीखने का, और मौका अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने का। तो क्यों ना सुबह की शुरुआत करें एक मुस्कान के साथ, थोड़ी सी उम्मीद के साथ और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए मिलते हैं उन खास लोगों से जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे सफर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, यानी हमारी तकनीकी टीम से।
0: जी दोस्तों, प्रोग्राम वही जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ, और रखेंगे साथ में आपको अपडेट, और उसके लिए हम अपनी टीम का सहयोग लेते हैं। और हमारी टीम में हमारे साथ जुड़े हैं ट्रांसमीटर पर फारूक अहमद शेख और नरेंद्र सिंह राठौड़, कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं सुनील जयपाल, कंसोल पर हमारा साथ दे रही है नीतू। नमस्कार, कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं राजेश लामरोड़, और कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजय व्यास की। इसके साथ ही दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं आपको प्रोग्राम का पहला गीत।

दोस्तों, आज मैं आपसे कोई खबर नहीं, बल्कि कोई बड़ी जानकारी नहीं, बस एक एहसास बांटना चाहता हूँ। एक ऐसा एहसास जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, लेकिन वक्त की भाग दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पेड़ के कीमत की, जो हमें सिर्फ गर्मियों में समझ में आती है। श्रोताओं, कभी आपने ध्यान दिया है कि गर्मियाँ पहले जैसी नहीं रही? पहले भी सूरज इतना ही तपता था, लेकिन तब धूप इतनी चुभती नहीं थी, क्योंकि रास्तों में पेड़ों की छांव हमारे साथ चलती थी। अब सड़कें लंबी हैं, चौड़ी हो गई हैं, इमारतें ऊंची हो गई हैं, हमारे शहर कंक्रीट के जंगल में बदल चुके हैं, लेकिन पेड़ों से मिलने वाली ठंडी छांव छोटी पड़ गई है। आज इंसान के पास सब कुछ है, एसी है, कूलर है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, क्योंकि प्रकृति की ठंडक मशीनों से नहीं मिलती दोस्तों, वो सिर्फ पेड़ों से मिलती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक पेड़ के कीमत की जो हमें सिर्फ गर्मियों में ही याद आती है। और सच कहूँ तो गर्मियों का नाम आते ही सबसे पहले बचपन याद आता है। वो स्कूल से लौटते वक्त पेड़ की छाँव में कुछ वक्त बिता लेना, वो दोस्तों के साथ आम के पेड़ से आम तोड़ना और दादी का कहना धूप बहुत तेज है थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाओ। वो शाम जब पूरा मोहल्ला पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाता था, कोई बातें करता था, कोई हंसता था और कोई बस हवा का आनंद लेता था। और रात में छत पर बिछी चारपाई, धीमी हवा और दूर कहीं पत्तों की सरसराहट और उन पेड़ों पर जगमगाते हुए जुगनू।

वह तरफ सिर्फ सीमेंट दिखाई देती है। पेड़ कटते गए और गर्मी बढ़ती गई। दोस्तों, कभी आपने किसी मजदूर को देखा है जो दोपहर की तेज धूप में काम करता है और फिर किसी छोटे से पेड़ के नीचे बैठकर दो घूंट पानी पीता है? उस पल वो पेड़ उसके लिए किसी महल से कम नहीं होता। तभी समझ आता है कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो जिंदगी को सहने की ताकत भी देते हैं।

दोस्तों, बहुत दुख होता है जब किसी पुराने पेड़ की जगह एक नई इमारत खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि पेड़ काटना सिर्फ लकड़ी काटना नहीं होता, उसके साथ जुड़ी यादें भी कट जाती हैं। किसी बच्चे का बचपन, किसी बुजुर्ग की शाम, किसी पक्षी का घर, सब खत्म हो जाता है। और शायद इसीलिए आज इंसान के पास सुविधाएं तो है, लेकिन प्रकृति वाला सुकून नहीं।

0: तो दोस्तों, इस गर्मी जब भी तपती धूप आपको परेशान करे तो एक बार उन पेड़ों को जरूर याद कीजिए जो बिना कुछ मांगे सालों से हमें छांव देते आए हैं। और अगर हो सके तो इस बार सिर्फ गर्मी की शिकायत मत कीजिए, एक छोटा सा पौधा जरूर लगाइए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को अगर बचपन वाली गर्मी लौटानी है तो पेड़ बचाने होंगे। तो चलिए, रुक करते हैं समाचारों की ओर। समाचारों के बाद हमारा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार जारी रहेगा, तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ जुड़े रहिए।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
2: मुख्य समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के 2 दिन के दौरे पर, कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। उनका आमेर महल और सिटी पैलेस सहित कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बीकानेर दौरा आज से शुरू होगा। उनका आज रात बीकानेर नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री कल सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे। वे सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे, साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। वहीं गृहमंत्री ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता यूसीसी के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।
3: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
2: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक्सप्रेस वे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए 4938 करोड़ रुपए के ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उन्होंने कोटपूतली किशनगढ़

0: चंडीगढ़ ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण को गति देने के लिए ये ऋण स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री ने कल राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण कॉरपोरेशन RSRDC की बैठक ली। उन्होंने नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली सड़क के अपग्रेडेशन और केकड़ी बाईपास निर्माण के ऋण प्रस्ताव भी मंजूर किए। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सप्ताह में चौथी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर हो गया है। जयपुर में पेट्रोल करीब 112 रूपये और डीजल लगभग 105 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की आखिरी तारीख आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तारीख आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्दी ही दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान नदियों नहरों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक, पौधरोपण और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम होंगे। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत आज जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जल स्रोतों, तालाबों और नदियों पर स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया जाएगा। चूरू, सवाईमाधोपुर, अलवर, हनुमानगढ़, बारा, अजमेर, बाड़मेर, पाली, करौली और भरतपुर सहित अन्य जिलों में जल पूजन, आरती और दीपदान के कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में पेयजल व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए कल राज्य स्तरीय विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान 519 टीमों ने गांव-गांव पहुंचकर पेयजल स्रोतों और पानी की आपूर्ति व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और 3,427 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। इस दौरान करीब 725 हैंडपंप और 400 पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए। वहीं 1100 से ज्यादा अवैध जल कनेक्शन हटाए गए। अभियान का उद्देश्य गर्मी के मौसम में चलाया जाएगा। इस दौरान पानी चोरी और अवैध जल कनेक्शन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र की 66 प्रतिभाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये समारोह 2 चरण में होगा। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। हीटवेव से बचाव और आपदा प्रबंधन विषय पर आज से जयपुर में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है। इसका उद्देश्य हीटवेव के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी।
1: इस कार्यशाला में विभिन्न संस्थाओं विशेषकर आपदा

0: विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा कई रिसर्च संस्थान आदि के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसमें हीट वेव से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव और उनके बचाव उपाय पर गहनता से चर्चा की जाएगी और हीट एक्शन प्लान और हीट से भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस पर मंथन किया जाएगा।
1: प्रदेश के 10 शहरों में कल दिन का पारा 44 डिग्री से ऊपर रहा। वहीं 9 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। वहीं कोटा और फलौदी 32 डिग्री से अधिक तापमान के साथ रातें सबसे गर्म रही। राजधानी जयपुर में भी दिन और रात काफी गर्म बने हुए हैं। अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री से ऊपर मापा गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। कई हिस्सों में दिन का पारा 45 से 46 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है। राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन कल अलवर में हुआ। इसमें वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। इस प्रतियोगिता में अलवर की बालिका टीम विजेता रही। वहीं बालक वर्ग में भरतपुर की टीम अव्वल रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के 2 दिन के दौरे पर, कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तो श्रोताओं, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार। मैं हूं हिमांशु अवस्थी और मेरे साथ हाजिर है
3: मनीषा जोशी बोहरा। और हम आपको प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं और सुनवाते हैं प्रोग्राम का फिर से गीत।

दोस्तों, हर दिन अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है, लेकिन इतिहास के कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ तारीख नहीं रहते बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल देते हैं। और ऐसी ही एक तारीख है 25 मई। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं 25 मई के इतिहास में दर्ज कुछ खास और प्रेरणादायक घटनाओं के बारे में।

0: दोस्तों 25 मई 1961, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसा सपना रखा जो उस समय लगभग असंभव माना जाता था। उन्होंने कहा कि इस दशक के खत्म होने से पहले अमेरिका इंसान को चंद्रमा पर भेजेगा और उसे सुरक्षित वापस भी लाएगा।
1: दोस्तों 1995 में आज के दिन अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार जीवित जीव के डीएनए को डिकोड करने में सफलता मिली थी।
0: दोस्तों अब चलते हैं 25 मई 1963। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में 32 स्वतंत्र अफ्रीकी देशों के नेता एक साथ आए। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी यानी OAU के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस संस्था का उद्देश्य था अफ्रीकी देशों को उपनिवेशवाद से मुक्त कराना और महाद्वीप में शांति लाना।
1: १९९८ में आज ही के दिन परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर प्रतिबंध न लगाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य सहमत हुए थे।
0: पच्चीस मई का दिन खेल जगत में भी याद किया जाता है, क्योंकि इसी दिन चिली ने पहली बार विश्व कप टेनिस का खिताब अपने नाम किया। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और उत्साह का पल था।
1: दोस्तों 2010 जी के दिन भारतीय मूल की 59 वर्षीय कमला प्रसाद बिसेसर निवर्तमान प्रधानमंत्री पैट्रिक मैनिंग को पराजित कर त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई थी।
0: दोस्तों 25 मई 2008, जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को रोबोटिक लैंडर फिनिक्स मास लैंडर

सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा गया। सोचे दोस्तों, एक समय इंसान चांद पर पहुंचने का सपना देख रहा था और अब मंगल की धरती पर अपने कदमों के निशान खोज रहा है। यह विज्ञान की उस उड़ान का प्रतीक था जो हमें हर दिन नई सीमाओं से आगे ले जाती है। तो दोस्तों, 25 मई हमें सिखाता है कि सपने अगर बड़े हों तो इंसान चांद तक पहुंच सकता है, एकता हो तो पूरा महाद्वीप बदल सकता है, और अगर मेहनत और जुनून हो तो एक साधारण इंसान भी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ सकता है।

दोस्तों, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और आज ही के दिन हमारा भारत मनाता है गंगा दशहरा। दोस्तों, गंगा

दशहरा हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र पर्व है और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और इसीलिए इस दिन को गंगा की धरती पर आगमन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और दान पुण्य करने से पापों का नाश होता है। अगर इसकी पुराणों की कथा में की बात करें तो राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुईं। लेकिन गंगा के तेज प्रवाह को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और इसके बाद गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुईं और लोगों का कल्याण किया। दोस्तों, इस दिन गंगा स्नान और पूजा, दान पुण्य और ज़रूरतमंदों की सहायता और इसके साथ ही गंगा आरती और भजन कीर्तन के साथ में जल संरक्षण और नदियों की स्वच्छता का संकल्प लिया जाता है। दोस्तों, हमें नदियों के महत्व और जल का संरक्षण भी देती है ये गंगा दशहरा का दिन। और गंगा केवल एक नदी नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और जीवन का प्रतीक मानी जाती है।

0: दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जिसने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध रखा है। खेल का नाम है फुटबॉल। हर साल 25 मई को दुनिया भर में विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2024 में इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी थी। इसका उद्देश्य सिर्फ खेल को उत्सव मनाना नहीं, बल्कि फुटबॉल के जरिए दुनिया में एकता, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना है। दोस्तों, फुटबॉल आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। फीफा के अनुसार दुनिया के लगभग 200 से ज़्यादा देशों में खेल खेला जाता है और करीब 5 अरब लोग किसी न किसी रूप से फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, चाहे खिलाड़ी के रूप में हो, दर्शक के रूप में हो या प्रशंसक के रूप में। यही वजह है कि जब फीफा वर्ल्ड कप होता है तो पूरी दुनिया की नज़रें एक ही मैदान पर टिकी होती हैं। फुटबॉल की सबसे खास बात यह है कि इसे खेलने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती। किसी गाँव की मिट्टी हो, शहर की गली हो या बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, फुटबॉल हर जगह लोगों को जोड़ देता है। ये खेल अमीर गरीब, भाषा, देश और संस्कृति की दीवारों को तोड़कर लोगों को एक साथ खड़ा कर देता है। इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए फीफा ने 21 मई से 25 मई तक विश्व फुटबॉल सप्ताह मनाने की शुरुआत की थी। इस साल की थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। गियानी इन्फेंटिनो ने कहा है कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि लोगों को करीब लाने वाली एक ताकत है। चाहे बच्चे मैदान में खेल रहे हों या लोग अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन कर रहे हों, फुटबॉल हर किसी को जोड़ने का काम करता है। अगर कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप है, जिसे 5 अरब लोगों ने देखा था। ब्राज़ील अब तक सबसे ज़्यादा 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी फुटबॉल का क्रेज़ लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर युवाओं के बीच। केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा, पूर्वोत्तर राज्यों में फुटबॉल का त्यौहार की तरह देखा जाता है। तो श्रोताओं, इस फुटबॉल दिवस पर आइए हम भी खेल की भावना को अपनाएं, एक दूसरे के साथ जुड़ें और जीवन में टीम वर्क, अनुशासन और एकता का संदेश आगे बढ़ाएं। क्योंकि सच ही कहा है किसी ने कि जब पूरी दुनिया एक गेंद के पीछे दौड़ती है तब इंसानियत जीतती है।
1: जी दोस्तों, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के कुछ प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं जिनके नाम मैं आपके सामने लेना चाहूंगी। सुनील छेत्री, जिन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम के महान कप्तानों में से एक अपना रुतबा कायम किया। बैचुंग भूटिया, जो भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, सिक्किम स्नाइपर भी उन्हें कहा जाता है। बी के बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, सुब्रता पॉल, गुरप्रीत सिंह संधू, इस तरह के फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने विश्व पटल पर वे फुटबॉल के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है और हमारे देश का नाम ऊंचा किया है।

दोस्तों अब वक्त है विज्ञान विश्व को जानने का। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको किसी पेड़ की ऊंचाई नापनी हो लेकिन आपके पास उसके ऊपर तक पहुंचने का कोई तरीका ना हो, या फिर किसी नदी को पार किए बिना उसकी चौड़ाई पता करनी हो, या एक मकान बनाते समय ये जानना हो कि दीवार बिल्कुल सीधी है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? आज से हजारों साल पहले भी इंसानों के सामने यही सवाल थे। ना मशीनें थीं, ना मोबाइल, ना कंप्यूटर, लेकिन फिर भी लोग विशाल पिरामिड बना रहे थे, मंदिर बना रहे थे, खेतों की नाप कर रहे थे और आसमान में तारों की दूरी समझने की कोशिश कर रहे थे। और इन्हीं ज़रूरतों के बीच जन्म हुआ गणित के एक ऐसे नियम का जिसने दुनिया को मापने का तरीका बदल दिया, पाइथागोरस प्रमेय। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमें पता हैं तो तीसरी भुजा आसानी से निकाली जा सकती है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये सिर्फ किताबों का सूत्र नहीं है दोस्तों, आपके घर की सीढ़ियों से लेकर मोबाइल के जीपीएस तक, क्रिकेट स्टेडियम के डिजाइन से लेकर अंतरिक्ष तक, हर जगह ये नियम काम करता है। हम अक्सर इसे पाइथागोरस के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी कहानी उससे भी पुरानी है। बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता, मिस्र के पिरामिड और भारत के सुलभा सूत्रों में भी इस सिद्धांत के संकेत मिलते हैं। भारत में ये वेदियां बनाते समय सही समकोण बनाने के लिए रस्सियों का उपयोग किया जाता था। मिस्र में मजदूर 3, 4 और 5 लंबाई वाली रस्सी से बिल्कुल सही कोण बना लेते थे। जब इंजीनियर पुल बनाता है, जब आर्किटेक्ट इमारत की मजबूती तय करता है, जब आपका मोबाइल आपको सही रास्ता दिखाता है, तब कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय चुपचाप अपना काम कर रही होती है। और शायद यही वजह है कि लगभग 4000 साल पहले

ये सिद्धांत आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस समय था। तो दोस्तों, आज इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, एक इंसान की सोच, खोज और समझ की भाषा है। एक छोटा सा सूत्र, लेकिन उसके अंदर छुपी है पूरी सभ्यता की बुद्धिमत्ता।

दोस्तों, आप प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं और करते हैं काम की बात। दोस्तों, गर्मियाँ अपने चरम पर हैं और ऐसे में हमारे शरीर को चाहिए ठंडक। तो हमारे जो डाइटिशियंस हैं, फिजिशियंस हैं, वो भी हमें ये रिकमेंड करते हैं कि हमें चिया सीड्स लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं, जो गर्मी से ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उन्हें भी हम चिया सीड्स दे सकते हैं। चिया सीड्स की खाली एक ही खासियत नहीं है कि ये इसकी तासीर ठंडी है, लेकिन इसके साथ में इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। और वो इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर चिया सीड्स के फ़ायदे की बात करें तो उसमें है पाचन, ये बेहतर बनाते हैं क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होता है, तो इसलिए ये हमारे शरीर में पाचन को सुचारू करते हैं। इसके बाद में ऊर्जा बढ़ाने में ये हमारी मददगार होते हैं। चिया सीड्स शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में सहायक माने जाते हैं और इसीलिए कई खिलाड़ी भी जो हैं वो इसे अपने आहार में शामिल करते हैं। वजन को नियंत्रित करने में भी चिया सीड्स काफ़ी फायदेमंद साबित होते हैं। पानी में भिगोने पर ये फूल जाते हैं, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है और बार बार भूख भी नहीं लगती। इसके अलावा दोस्तों, चिया सीड्स हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जो हड्डियों और दांतों के लिए लाभकारी होते हैं। इसके साथ ही जो चिया सीड्स हैं वो हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे माने गए हैं क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हृदय को स्वस्थ रखने और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। और इसका एक और बहुत ही अच्छा एक लाभ है हमारे लिए, त्वचा और बालों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ रखने और बालों को पोषण देने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही ब्लड शुगर को संतुलित करने में भी ये हमारी मदद करते हैं। फाइबर की वजह से ये भोजन के बाद शुगर के तेज़ी से बढ़ने को धीमा करने में मदद करते हैं। तो ये खाली एक ही इसका फ़ायदा नहीं है कि हम गर्मियों में इसे शरीर में ठंडक बढ़ाने के लिए काम में लें, इसके साथ ही ये खूब सारे फ़ायदे जो मैंने आपको बताए ये हमारे शरीर के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। अब इसे लेते कैसे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। 1 से 2 चम्मच आप चिया सीड्स को लेकर आधे घंटे के लिए पानी में भिगो सकते हैं, जिससे वे फूल कर बड़े हो जाते हैं। और फिर इसे दूध, दही, शरबत, ओट्स, सलाद, किसी में भी, जिसमें भी आप मिलाकर खाना चाहते हैं, आप खाइए। और गर्मियों में अपने शरीर को तरल रखिए और अपने शरीर को ठंडक इसे दिलाइए। तो ये थी हमारी काम की बात। पढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, अब उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक कहानी नहीं, बल्कि उन वीर क्रांतिकारियों के साहस, त्याग और देशभक्ति का अमर उदाहरण है जिन्होंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस को, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 25 मई 1886 को बंगाल के वर्धमान में हुआ था। रास बिहारी बोस बचपन से ही देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनके मन में गहरा आक्रोश था और यही भावना उन्हें क्रांतिकारी रास्ते की ओर ले चली। साल 1908 के अलीपुर बम कांड में उनका नाम प्रमुखता से सामने आया। इसके बाद 1912 में उन्होंने उस ऐतिहासिक बम साजिश में हिस्सा लिया जिसका तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को निशाना बनाया गया था। साल 1913 में उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी बाघा जतिन से हुई। उनके मार्गदर्शन में रास बिहारी बोस का संकल्प और मजबूत हुआ और वो पूरी तरह भारत की आज़ादी के आंदोलन में जुट गए। वो गदर पार्टी के प्रमुख नेता भी बने जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को संगठित कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करना था। साल 1942 में उन्होंने जापान में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने इस सेना का नेतृत्व भी किया ताकि स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक मजबूती मिल सके। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनके संघर्ष देशभक्ति को याद करते हैं। 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में उनका निधन हो गया था, लेकिन देश के लिए उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा।
1: दोस्तों, किसी भी देश की प्रगति में रक्षा विभाग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। रक्षा विभाग देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है और भारी खतरों से देश की रक्षा करता है, और जब देश सुरक्षित रहता है तब लोग शांति और निश्चिंतता के साथ शिक्षा, व्यापार, उद्योग और अन्य विकास कार्यों में भाग ले पाते हैं। रक्षा विभाग केवल युद्ध के समय ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप और महामारी के समय भी लोगों की सहायता करता है, और सेना के अनुशासन, तकनीकी विकास और अनुसंधान से ही देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति भी बढ़ती है। और इस प्रकार रक्षा विभाग देश की सुरक्षा, एकता और विकास को मजबूत बनाकर राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी संदर्भ में दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि जो मिसाइल्स हमारे रक्षा विभाग में बनती हैं वो किस तरह की होती हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, ताकि

कि आप भी अपडेट हो पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिसाइल्स के प्रकारों की, कि प्रक्षेपण के आधार पर मिसाइल्स कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, प्रक्षेपण के आधार पर मिसाइल्स होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। एक सतह से सतह पर वार करने वाली, एक सतह से हवा पर वार हवा में वार करने वाली, फिर हवा से हवा में वार करने वाली और हवा से सतह में वार करने वाली। इसके बाद जल से जल में वार करने वाली, जिसे हम टॉर्पिडो कहते हैं, और जल से सतह या फिर हवा में वार करने वाली। इसके बाद में अगर हम मिसाइल्स को रेंज के आधार पर, यानी कि परास के आधार पर अगर उसकी बात करें, तो परास के आधार पर जो हमारी मिसाइल्स होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। सबसे पहले शॉर्ट रेंज, कम परास की, जो कि लगभग 1000 किलोमीटर तक उसकी रेंज होती है। उसके बाद में मीडियम रेंज, जो कि मध्यम परास की, वो 1000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक की रेंज उसकी मानी जाती है। उसके बाद में इंटरमीडिएट रेंज की, यानी कि मध्यवर्ती परास की, 3500 से लेकर 5500 तक किलोमीटर तक इसकी रेंज रहती है। और उसके बाद में आती है अंतर महाद्वीपीय, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जो कि 5000 किलोमीटर या उससे अधिक की क्षमता रेंज रखती है। गति के आधार पर अगर बात करें मिसाइल्स की, तो दोस्तों जो मिसाइल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। जो सबसोनिक होती है उसकी गति होती है 1 मैक। अगर हम मैक की बात करें तो 1 मैक यानी कि साउंड की स्पीड, और साउंड की स्पीड होती है 1 सेकंड में 343 मीटर, यानी कि 1 सेकंड में वो 343 मीटर तक की दूरी तय करती है, वो होती है 1 मैक। और हमारी जो सबसोनिक मिसाइल होती है वो उसकी गति होती है 1 मैक से कम। जो सुपरसोनिक होती है उसकी गति होती है 1 से 5 मैक के बीच में, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है उसकी गति होती है लगभग 5 मैक या उससे अधिक। इसके बाद में हम अगर बात करें मिसाइल्स के पथ के आधार पर, तो 2 प्रकार की मिसाइल्स होती है। एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे क्रूज मिसाइल के बारे में। तो दोस्तों, जो क्रूज मिसाइल होती है इनका पथ पूर्व निर्धारित नहीं होता है, यानी कि ये अपने टारगेट को बनाने निशाना बनाने के लिए वो किसी भी पथ का चयन कर सकती है। तो टारगेट होता है उसका, लेकिन वो पथ जो होता है उसका, कि वो किस तरफ से होके जाएगी, वो डिसाइडेड नहीं होता है, क्योंकि बीच में रास्ते में पेड़ आते हैं या कोई भी बिल्डिंग्स आती है, क्योंकि इनकी जो उड़ान की जो रेंज होती है वो ज़्यादा ऊंची नहीं होती है। तो वो कोई भी अपना रास्ता चुनकर अपने टारगेट को निशाना बनाती है, तो इनका पथ पूर्व निर्धारित नहीं होता है। इन्हें उड़ान के दौरान हम नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि हम उसकी स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं और उनका थोड़ा सा पथ भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो मिसाइल्स होती हैं क्रूज मिसाइल, इनका थोड़ा पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये कम रेंज में, मतलब कम हाइट पर उड़ती हैं, तो जो भी रडार होते हैं वो इसको पकड़ नहीं पाते हैं और वो उनकी रेंज में आ नहीं पाता है। तो जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं इनका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद में इनका वर्गीकरण जो होता है वो गति के आधार पर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में इसमें जो इंजन प्रयुक्त होता है वो जेट इंजन प्रयुक्त होता है। और अगर हमारे भारत के संदर्भ में बात करें, तो हमारे पास अभी ब्रह्मोस, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी क्रूज मिसाइल्स तैनात हैं हमारे पास। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल की। इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो पथ होता है वो पूर्व निर्धारित होता है, कि यानी कि ये इसी हाइट पर उड़ेगी और इसी टारगेट तो उनका निर्धारित ही तो होता है, लेकिन इनकी जो जाने का तरीका होता है, पथ जो होता है, वो पूर्व एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट तय होता है कि वो उसी पथ से होकर जाएंगी। इसके बाद में इनका जो उड़ान होती है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, यानी कि वो किस स्पीड से जाएगी वो पहले से पूर्व निर्धारित होता है। आप उसे एक बार अगर आप निशाना दाग देते हैं तो वो उसी स्पीड से जाकर अपने निशाने पर जाती है। उसके बाद में इनका पता लगाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि इनकी जो हाइट होती है, उड़ने की जो इनकी हाइट होती है, वो रडार से ऊपर होती है। तो जो दूसरा देश है, जो भी दुश्मन देश है, तो वो रडार से इनका पता लगा लेता है। इसके बाद में अगर परास की बात करें, तो परास के आधार पर इनका जो होती है क्लासिफिकेशन होता है कि इनकी क्या रेंज रहेगी, उस हिसाब से हम बैलिस्टिक मिसाइल्स का पता लगाते हैं, कि ये उसका नाम भी उसी के हिसाब से होता है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये इस परास की है। उसके बाद में अगर इसके इंजन की बात करें, तो इसमें एक रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। और भारत के संदर्भ में हम बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है हमारे पास में, जो है अभी अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, ये हमारे भारत की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो चूंकि ये इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम है, तो हम चाहते थे कि हम आपके हमको आपको मिसाइल्स के बारे में विस्तार से बताएं। अगला जब भी प्रोग्राम होगा तो हम और भी इसे थोड़ा और विस्तार से बताएंगे।

0: दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। मुझे मनीषा जोशी बरा और मेरे साथ में
1: यानी मुझे हिमांशु अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, कार्यक्रम सुन रहे थे आप। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर, यानी 531 किलो हर्ट्स। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, लोक संगीत।

लोक संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे आप। ये आकाशवाणी का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत की इस कड़ी में पेश है ये पहला गीत जगजीत सिंह की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इश्क से। इसे आवाज दी है उदित नारायण और विभा शर्मा ने।
1: ये तुम्हें मुझसे इश्क है?
2: मुझे शर्म आती है।
1: देखो, तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जब सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम है रिफ्यूजी।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लीजिए सुनिए अलका याग्निक और कैलाश खेर की आवाज में फिल्म ये गाना आप सुन रहे हैं फिल्म हम तुमसे अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़।

लीजिए अब सुनिए फिल्म ताल से अनुराधा, स्थिराम, सुजाता, सोनू निगम और ए आर रहमान की आवाज में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में सबसे पहले सुनिए कैलाश निमावत को।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुगम संगीत में लीजिए, सुनिए गुलाम अली को।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। एक बजने को है, कुछ देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की।
1: मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आज गंगा दशहरे के दिन हमने ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है। आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है और हमको जल को बचाने का भी काम करें और हम जल को संरक्षण करते हुए स्वच्छता का भी हमने इसमें रखा है कि हमारा जल स्वच्छ रहे। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हुए हम इस अभियान को पूर्ण करेंगे।
0: अभियान के शुभारंभ के मौके पर महिलाओं की ओर से कलश यात्रा भी निकाली गई। सवाईमाधोपुर में सूरवाल बांध पर आयोजित समारोह का शुभारंभ कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने किया। उन्होंने धरती पर बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी से पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को जल संरक्षण की भी शपथ दिलाई। उधर सैलूम्बर में सरणी नदी का पूजन कर स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। जैसलमेर में गढ़ी सरपाल से प्रभात फेरी और कलश यात्रा की शुरुआत हुई और प्रेरक नारों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया गया। गंगा दशमी से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान नदियों, नहरों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक, पौधरोपण और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। उनका आमेर महल और सिटी पैलेस सहित कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की है। जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बीकानेर दौरा आज से शुरू होगा। उनका आज रात बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री कल सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे। वे सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे, साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र की 66 प्रतिभाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये समारोह 2 चरण में होगा। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। प्रदेश से इस बार 3 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। इनमें अलगोजा वादक तगाराम भील, भापंग वादक गफरुद्दीन मेवाती और समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज शामिल है। हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरी दुनिया से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग सऊदी अरब के मक्का शहर से 5 दिन के इस सफर की शुरुआत करेंगे और मीना में इकट्ठा होंगे। इसके बाद जायरीन कल तड़के अराफात के मैदान की तरफ जाएंगे। इस साल हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। वहीं राजस्थान से इस बार करीब 4,500 लोग हज के मुकद्दस सफर पर गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सप्ताह में चौथी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। जयपुर में पेट्रोल करीब 112 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुनवाला सगला किसान भाया ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भाया आज आपने जानकारी दी रहा के भाई गर्मिया रे महीने आप बागवानी किन तरह से कर सका। खासतौर से बात करा कि आप गर्मिया रे महीने जी का फलदार जी का पौधा है वे भी आप लगाया करा तो इन महीने सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति रे वास्ते आप कई कर सका कि भाई सूक्ष्म तत्व मिश्रण ने 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी दर शू गोल बना परो और छिड़काव आपने करना चाहिए। इन आगे आगे जो आंबो लागोड़ो है तो आम बारे मैंने सूक्ष्म पोषक तत्व मैंने जो आप बात करा जस्तरी पूर्ति रे वास्ते जिंक सल्फेट 0.3% 3 ग्राम प्रति लीटर पानी रोज को छिड़काव है वो आपने 10 से 15 दिन रे अंतराल माते सिंचाई रे सागे करना चाहिए। कई किसान भाई पपीते रे जो नर्सरी है वे तैयार किया करे तो उन वास्ते जी की किस्म है वे है हनीड्यू कुर्ग हनीड्यू पूसा डिलीशियस पूसा नन्हा अर्का सूर्या और सीओ 2 है। किस्म रो आप चयन करे और पपीता रा जी का पौध है तैयार करे जुताई कर परार आप बढ़िया खाद डाले और खेत मैंने जी की ऊंची उठड़ा जी का खोडा कबड़ा जिन्हें आप क्यारिया क्या करा वे आपने रखनी चाहिए। बीजारी 2 सेंटीमीटर की दूरी माते आपने 10 सेंटीमीटर की कतार मैंने लंगे टंगे 1.5 सेंटीमीटर की गहराई माते आपने पपीता रे जिको पौधो है उनरी आपने बुआई करनी चाहिए। अंबारा महीने फलोदान रे वास्ते आपने खेतरे भी बढ़िया तैयारी आप करा पहला आप लंगे टंगे 2 जुतियां मिट्टी पलटने वालों जो हल है उन आप कर दा और खेतर मैंने जी की खरपतवार है विने भी आप निकालना और जब तक कोशिश अपने आ करनी चाहिए कि भाई अपन जो को खेत है वो समतल रहना चाहिए। इन रहा आगे आगे देखो नींबू है लसोड़ा है बील है पपीता है करुंदा है ये भात भात जी का अपने फलदार जी का वृक्ष है यहाँ पर किसान भाई यानी खेती जी की लिया करे। कई किसान भाई आपने जो बात करा कि भाई आंवला जी का पौधा है वे भी अपने बायोडा है तो इन महीने हमारे जो गर्मियां चल रही है तो अपने लंगे टंगे अपने सिंचाई अपने देवनी चाहिए। और नींबू रे महीने रेड स्पाइडर माइट या सिट शशिला रे नियंत्रण वास्ते मोनोक्रोटोफॉस 36% SL 1 मिलीलीटर दवा रो प्रति लीटर पानी में गोल बनान अपने छिड़काव भी करना चाहिए। इन आगे डाइबेक ग्रसित जी का पौधा है वाणी जी की हुक्योड़ी जी की टहनिया है वन अपने काट देनी चाहिए। और कटड़ा जी का भाग है वह आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रो जी को पेस्ट है वो आपने लगाना चाहिए। और पौधा माते कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रो 3 ग्राम या मैनकोजे 75% WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मैंने गोल बना परान आपने छिड़काव आपने करना चाहिए। किसान भैया आपने जानकारी दिलावा हमें सुनावा आपने बढ़िया सी गीत रचना।

किसान भाई आपा जानकारी ले रहा था कि भाई गर्मिया रे महीने जी का बागवानी रे जी का कार्य है वे आपा किन तरह से कर सका। किसान भाई री कोशिश आई रहा है कि भाई भांत भांतरा जी का फलदार जी का पौधा है वे आप लागोड़ा है सूक्ष्म पोषक तत्व तो देवे, इन साथ कोई मान लो बीमारी है तो आप दवाई पानी रो भी आप छिड़काव करे, टेमो टेम आप ध्यान रखा तो उन पौधा सु रोकड़ा सु जी का फल है अच्छा लाग गया करे। फलदार पौधा ने लगाऊ पहला भी अपने एक चीज रो ध्यान रखना चाहिए कि भाई निश्चित जी की दूरी है विरमाते आप चिन्हित करना और बढ़िया आप खाडा खोदा और विन बाद महीने आपने पौधा रो जिको रोपण है वो आपने करनो चाहिए। और जो हमार जो महीनो चाल रही है और तकलो महीनो जिको है इन महीने गड्ढा खोद पर आप बढ़िया किसान भाई खुला छोड़ दे और गड्ढा खोदता टाइम अपन ध्यान रखना है ऊपरी आधी उपजू मिट्टी एक तरफ अपने रखनी चाहिए और नीचे जी की शेष मिट्टी जी की है वह क्षेत्र में अपने फैला देनी चाहिए। हरेक गड्ढे के हिसाब से 15 लीटर 20 किलो गोबरी जी की खाद है वह अपन बढ़िया गड्ढेर में देनी चाहिए। और एक बात रो किसान भाई ध्यान रखे कि भाई जिका भी आगे जो रोकड़ा लगावे चाहे अनारा लगावा चाहे फलदारा लगावा चाहे नींबूरा लगावा पपीतारा लगावा पौधा लगाने पहला 100 ग्राम क्विनोल्फॉस 1.5% चून प्रति गड्ढे के हिसाब से अपन बढ़िया मिलावना चाहिए। किसान भाइया आ ही जानकारी के भाई गर्मिया के महीने आप बागवानी किन तरह से कर सका, अपना जिका रूकड़ा लागोड़ा है उन्हें जिकी देखभाल है वो आप किन तरह से कर सका। और जो एक बात आवे कि भाई हम गर्मी हली पड़े मान लो तो टाइमो टाइम अपने सिंचेरी जी की व्यवस्था है वह अपने रखनी चाहिए। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूर्व वेरियो है दिनेश राणे जाने शेख दिराओ राम राम।

0: सुई धागे सू केरी है मन री हर एक पीर, रंगा री इन छब स्यू बदले कपड़ा री तकदीर। बूटी छपी है बागा री और ब्रश रो चाल्यो जादू, लिबास देकर मन भी हो गयो सबारो आज बेकाबू। बिल्कुल आपने अठेरा परिधान अठारो पहनावो देकर हर कोई है जो को बेकाबू हो जावे। और इ पर होण वालो जो को काम है साथ साथ रंग बिरंगा रंगा रो जो को मेल है कपड़ा ने और भी मनमोहनो बना देवे। तो चलो आज रा कार्यक्रम ने और भी मनमोहनो बनावा और स्वागत करा सगली सखियां रो कार्यक्रम गणगौर रमाईने। तो साथ ही साथ सगली सखिया ने आपरी सखी कोमल राठौड़ रा घने मानसू राम राम और शीतल आपने भी मारा घने मानसू राम राम।
1: शीतल री तरफ सु भी सगली सखिया ने घणे मान राम राम। और आज रो कार्यक्रम जैके देखो आप बात करी थी हो कपड़ा री और रंगा री, तो कपड़ा पर आपरे हुनर रो जादू के तरीके सु बिखेर सके है उन तरीके रा ही रंग लेर हाजिर हाँ आज रे इन कार्यक्रम में। तो इन री तो बात आपा करा लई, साथ ही आज है गंगा दशहरा या गंगा दशमी भी जिन्हें कया करे है। तो सबा ने वीरी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनावां। और बिल्कुल गंगा अपनी माता है और जल अपनी धरोहर है। तो पावन गंगा दशमी रे इन मौके माते यानी आज सु 25 मई सु लेन विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून ताई वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान भी है जो को चलायो जा रहे है। तो आपने जल है जो को बचावनो है और साथ ही साथ है इन पर अरवरी सब आने एक बार फिर सु मोकली मोकली शुभकामना।

0: बिल्कुल पधारो हमारे देश। राजस्थान पधारण वाला जितना भी मेहमान होया करे है, वह जब भी राजस्थान री छवि बनाया करे है तो हमारे सामने एक ही छवि आया करे है, अठेरा रंग बिरंगा परिधान।
1: बिल्कुल
0: और कपड़ा री अगर बात करा तो आपने राजस्थान रे कपड़ा री एक खासियत आ भी है कि अठेरा रंग और वहाँ रंगा सु सजोड़ी तरह तरह री कलावा।
1: बिल्कुल कलावा है जो कि हाथ सु करी जावे, और हाथरी कला सु यानी हाथरी उंगलियां सु जद एक एक टांका और एक एक कलाकार रा रंग बिखरे, तो साधारण सु जो को कपड़ो है वो भी किया करे नी कि राजशाही बन जावे शीतल जी, और असली रंगत आवे जत पारंपरिक कला रे साथ रंग भी मिल जावे, और जत बुटीक री बारीक कढ़ाई फैब्रिक पेंटिंग रा रंग और एक दूजा सु मिल जावे, तो ये जका परिधान है वे सिर्फ परिधान ही कौन रहे, वो बन जावे मारवाड़ रो जीवंत गहनो।
0: बिल्कुल। और कपड़ा रो इतिहास उत्तो ही पुराणो है जित्ती आपणी अठेरी संस्कृति। कपड़ो सिर्फ तन ढकन रो ही काम कोनी करया करे, बल्कि कला रो भी एक माध्यम है। वीरो एक कैनवास कह सका हाँ, जिरे माथे छोटी छोटी पत्तियां, फूल, कैरी री डिजाइन और साथ ही साथ रंग एक कपड़ा पर जब बिखरे तो इया लागे ज्या मरुधरा रा धोरा माथे बसंत उतर आयो है।
1: बिल्कुल, और कटई हाथ सु रंग बिरंगी आकृतियां कपड़ा माथे उकेरे तो कटई थप्परी थप थपरी जकी थाप है, बा प्राकृतिक रंगा रे साथे आपनी जकी विरासत है बिने आवन वाली पीढ़ी रा दिला रे माथे किया करे की छाप देवे, और कटई ब्रश री छाप सु तो कटई घुंगरू सु और जरी रा तारा री खनक और कटई गोटा पत्ती री चमक कटई सोना चांदी रे तारा सु शाही अंदाज देर जरी री चमक रे साथ ही एक परिधान ने मारवाड़ रो या हिंदुस्तान रो एक अनमोल गहनो बना दिया करे, तो कपड़ा पर बिखरता रंग है ये जो कि बूट या सिर्फ फैशन नहीं है, बा अपने देश री कला री गौरवशाली जो को इतिहास है वो मान्यो जावे।

0: कपड़ा माथे हुनर रा रंग रेडियो रे संग लेन आया हा आज रे इन विशेष गणगौर में। तो दिन ई विशेष गणगौर में ही अब मासू इंदौर सु फोन रे माध्यम सु जुड़िया है। आप रे हाथ रे हुनर रंग री कलाकारी सु कपड़ा ने नयो रूप देवन वाली फैब्रिक पेंटिंग कलाकार अनुराग जैन जो आप री कला सु तो ऊंचो नाम कमायो ही है, साथ ही साथ कई महिलावा ने ओ हुनर सीखा वाने आत्मनिर्भर बना रोजगार दिराने रो भी काम करियो है। तो आसु बात करेला कोमल राठौर।
1: कला सिर्फ कागज या कैनवास ताई सीमित कोनी होवे, ज्यादा कपड़ा पर उतरे तो पहनावा ने जीवंत बना देवे। और फैब्रिक पेंटिंग यानी कपड़ा पर चित्रकारी एक एड़ी फूटरी विद्या है जो कि सादा कपड़ा ने भी एक न्यारी ओर खान देवे। और आज आपने साथ एक एड़ी जानी मानी सखी जुड़ी है जका रंग और ब्रश रा जादू सु फैब्रिक पेंटिंग री दुनिया में आप एक मोटो नाम कमायो है। तो आज आपने साथ है फैब्रिक पेंटिंग कलाकार अनुराग जी जैन। तो अनुराग जी, जोधपुर आई गणगौर कार्यक्रम में आप लोग घणी मानसु स्वागत और राम राम।
2: राम राम जी गणगौर की पूरी टीम को और आकाशवाणी टीम को, मेरा राम राम और श्रेताओं को राम राम।
1: बिल्कुल अनुराग जी, सबसे पहले आपसु ओ जाननी चाहवा कि रंगा और कपड़ा री खूबसूरत दुनिया रे मायने आप रो आणो किया होयो और इन क्षेत्र सु जुड़न रो जको विचार है वो आपरे मन में किया आयो।
2: देखिए, रंग किसको अच्छे नहीं लगते हैं और उन्हीं रंगों ने मुझे अट्रैक्ट किया और मेरे मन में आया कि जो मेरे अंदर से जो मेरे फूलों के लिए पत्तियों के लिए जो विचार निकलते हैं उनको मैंने कपड़ों पर उतार दिया और उससे मैं जुड़कर ये कहना चाहूंगी कि मन बहुत प्रसन्न रहता है और बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा, मतलब आप रो जो को प्रकृति से जुड़ाव है, आपरी इच्छा रे हिसाब से आप इन क्षेत्र में आया हो।
2: अब बिल्कुल जी बिल्कुल, उनको सबको देख देख के बस मन में हुआ कि इनको कपड़ों पर उतारा जाए, सभी को पहनाया जाए और खुद भी पहना जाए जी।
1: बिल्कुल, और एक कोरा कपड़ा पर जब आप ब्रश चलाओ तो कपड़ा रो जो को रंग है या कपड़ा रो और रंगा रो जो को तालमेल है बिन बिठानो की तो मुश्किल हुआ करे।
2: देखिए, मुश्किल तो अब नहीं लगता है, पहले लगता था। जब मेरा शुरुआत का समय था तब ऐसा लगता था ये सामने वाले को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मन में कुछ शंका रहती थी। लेकिन धीरे धीरे काम करते करते ऐसा लगा कि नहीं, कोई ना कोई रंग, कोई ना कोई डिजाइन किसी के लिए बनी है, तो बिल्कुल हमको उसको कपड़े पर उतारना है और सबके सामने लेकर आना है।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, क्योंकि किया करे ना कि आपा अगर सोचला कि आ चीज आपा ने करनी है तो आपा भी ने बहुत बढ़िया बना दा।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी पूरी कोशिश होती कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं। देखिए, जब हम अंदर से सोच लेते हैं ना कि ये मैंने सबसे अच्छा बनाया है तो सबको देखने में भी वो चीज बहुत बहुत अट्रैक्ट करती है और सब खुश हो जाते हैं।
1: चित्रकारी रमाइने जो को कपड़ा रो चुनाव हुआ करे वो भी खास मायनो राख्या करे, तो किसा कपड़ा माथे रंग है जका सबसे ज्यादा खिलर आवे और इरो कई कारण है?
2: देखिए, सबसे मेन चीज तो यह है, फैशन की दुनिया है ना जी। तो जैसे आज के समय में ऑर्गेन्जा कपड़ा बहुत ज्यादा इन है और तो मैं उसकी बहुत तारीफ करना चाहूंगी कि उसके ऊपर जैसे ही अपन कलर्स को डालते हैं ना तो वो इतने अच्छी तरह से उभर कर आते हैं कि मतलब आप देखते रह जाएंगे। और उसमें हम एक वॉटरी इफेक्ट, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो दे पाते हैं। और दूसरे धीरे धीरे फिर जॉर्जेट है और चंदेरी है, इन सारे कपड़ों पे भी हम काम करते

0: हैं उनका एक अलग ही निखार होता है।
1: बिल्कुल। और जी कि आप बात पेंटिंग भी कर ही रही हैं, तो पेंटिंग
0: जी
1: करता टाइम देखो कपड़ा पर रंगा ने पक्का करण वास्ते या फिर फैलाव से बचाने वास्ते कौन सी बात का ध्यान आपा ने रखने जरूरी हुआ है?
0: देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमने पेंटिंग कर ली है तो उसको हमेशा 24 घंटे के बाद उल्टी तरफ से प्रेस जरूर करना चाहिए ताकि वो कपड़े और कलर की पकड़ मजबूत हो जाए। और फिर आगे जब भी आप उनको जब धोने के लिए जाएं, वॉश करेंगे, तो अपन को उनको बहुत घंटों के लिए डिप नहीं करना है, जैसे कि अपन गला देवे हैं तो वैसा नहीं करना है अपने को। तो उससे भी अपन कपड़ों को, रंगों को बहुत अच्छी तरह से आगे अच्छा से रख सकते हैं।
1: जिया की कई फैब्रिक कलर है जो कि शीशे हो या करे बे जल्दी सूख जावे या कई ट्यूब्स है जो भी जल्दी सूख जाया करे, तो आने लंबा टाइम तानी ताजा रखने वास्ते कोई टिप?
0: हाँ जी बिल्कुल, है ना, अपन उन कलर्स की बॉटल्स में थोड़ा सा पानी या मीडियम, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा डालकर समय समय पर बॉटल्स को खोलकर और हमेशा बॉटल में शेक करके यूज करना चाहिए। और जब भी आपको उनको रखना हो कि भाई अब मुझे एक महीने काम नहीं करना है, तो उनमें थोड़ा सा पानी डालकर और बॉटल को टाइट बंद करके उल्टा रखना चाहिए ताकि लंबे समय तक वे कलर गीले बने रहे और अपन आगे यूज कर सका।
1: बिल्कुल। तकनीक अपना रापा जगह वेस्ट हो रहा जगह कलर है वेस्ट हो जावे तो भी स्वाप बच सका।
0: जी
1: बिल्कुल। आप ये जितनी भी पेंटिंग है वहां की
0: जी
1: जो
0: जी
1: डिजाइन है वे भी काफी अनोखी हुई है करे, तो ये
0: थैंक यू
1: डिजाइन आप
0: जी।
1: जब बनाओ तो आ रही जो की प्रेरणा है बा आपने कठा सु मिले कटे कटे का ही अपनी जो क्या प्रकृति है अपनी लोक संस्कृति है बा भी हीरो हिस्सो है।
0: बिल्कुल जी, प्रकृति तो हमारी सबसे बड़ी शिक्षा हमको देने वाली है। जैसे हम कोई भी पेड़ देखते हैं तो हम उसको अपने कपड़ों पर उकेर देते हैं। आप किसी भी तरह के वर्क को देख लीजिए, जैसे चंदेरी पैटर्न हुआ, माहेश्वरी हुआ, पैठणी हुआ, इन सब में भी हमको ये चित्रकारी देखने मिलती है, वो वीविंग के थ्रू मिलती है। और मैं अपने ब्रश के थ्रू इन सबको उतारती हूँ, तो देखिए प्रकृति से हमारा कहीं ना कहीं तो जुड़ाव है और बना हुआ है। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति से जुड़ी डिजाइन ना आप ज्यादातर बनाया करो।
0: जी मैं फूलों से बहुत इंस्पायर हूँ और फूल मुझे बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जी
1: और अनुराग जी तो अमूमन आप भी सोचा कि जबकि कपड़ा पर पेंटिंग हुआ है वो धोवन सु खराब हो जी, तो इरी जबकि लंबी उम्र है या देखभाल वास्ते का ही करना चाहिए?
0: हाँ देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पेंटिंग करने के बाद उसको उल्टी तरफ से प्रेस करना है। रख रखाव में आप उसको सादा, मतलब यदि आपके सिल्क वगैरह पर पेंटिंग है तो वो तो ड्राई क्लीन ही होगा,
1: बिल्कुल।
0: और यदि आप जॉर्जेट और दूसरे कपड़ों पर कर रहे हैं तो उसको आप होम वॉश भी कर सकते हैं। इजी वॉश कीजिए, ज्यादा देर तक डिप करके मत रखिए, और बिल्कुल उसकी ज्यादा बहुत कड़क अपन को देखभाल की आवश्यकता नहीं है, इजी है इन सबको रखना।
1: तो ये जो पेंटिंग है मतलब लंबा उम्र तक चल सके कितना टाइम तक चले लगभग?
0: जी बिल्कुल, मैं इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मेरे पास आपको 30 साल पुरानी भी साड़ियाँ जो मैंने अपनी सासू जी को बनाकर दी थी, वो साड़ियाँ भी आज अवेलेबल हैं और बिल्कुल फ्रेश हालत में हैं।
1: तो मतलब अपनी क्वालिटी जो कि आप यूज ले रहे हैं रंगारी भी पर डिपेंड करे
0: बिल्कुल,
1: और कुछ
0: रंग
1: रख
0: हाँ
1: रखाव।
0: कलर्स बिल्कुल आप अच्छी क्वालिटी के यदि यूज कर रहे हैं और उनका रख रखाव अच्छे से रख रहे हैं तो वे लंबे समय तक आपका साथ देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, फिर आप अच्छे से रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और आप
0: जी
1: एक बेहतरीन कलाकार तो हो ही, पर एक कलाकार होना और दूसरा ने कला सिखानो इनमें कितो फर्क किया करे, क्योंकि आप रोज को टीचिंग एक्सपीरियंस है वो केड़ो करियो क्योंकि आप आज की कला है बस सिखाया भी करो।
0: जी देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने आप को एक बहुत छोटी सी कलाकार मानती हूँ, लेकिन हाँ प्रकृति ने जो मुझे दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब में बांटना चाहिए। मेरे लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन यदि किसी भी, मैंने जैसे 100 लोगों को सिखाया है और उनमें से यदि कोई 2 लोग भी ऐसे निकल गए जिन्होंने आगे चल के अपना जीवन यापन कर लिया या उससे कुछ तो अपने लिए कर लिया, तो मुझे सिखाने में बहुत बहुत आनंद आता है और इसीलिए मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ।
1: बिल्कुल। और जब
0: जी
1: नहीं हो कोई स्टूडेंट आवे या कोई महिला आवे वो
0: जी
1: पहली बार आप हाथ में ब्रश पकड़े तो
0: जी
1: वीरा मन में एक डर भी हुआ करे कि कपड़ों है जो को खराब नहीं हो जावे, तो वीरा ये डर ने आपके यहाँ दूर कराया करो।
0: मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सबसे पहले उन लोगों को बहुत छोटी छोटी सी चीजों से शुरुआत करवाती हूँ और उनको रफ कपड़ा एक देती हूँ कि भाई आप सबसे पहले ना इस पर चलाकर देखिए ब्रश को, और उनको मैं टेक्निक सिखाती हूँ कि देखिए आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका चीज भी नहीं बिगड़ेगा और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे पहली चीज उनको हम सफेद रंग पे काम कराते हैं, क्योंकि सफेद रंग पर कोई भी कलर आप डालिए सदा उठकर आते हैं। तो जो स्टूडेंट आया है वो अपना मन एकदम खुश पाता है कि अरे वाह, मैंने इतनी सुंदर चीज बना ली। तो मैं इस चीज का जरूर ध्यान रखती हूँ कि उनको मोटिवेट भी कर सकूं और उनको

0: अच्छी तरह से सिखा भी सकूं। हमारा यही उद्देश्य है और यही मेरी कामना बनी रहती है कि जो भी आए तो वो इस चीज से जुड़ता जाए और अपने लिए कुछ करता जाए। जी
1: बिल्कुल, कला ने आप आगे तो बढ़ा रहे हो, लेकिन देखो आज को डिजिटल युग बोल दो चाहे बदल तो दौर के दो,
0: जी
1: तो जो कि अब आर लोग है फोन री स्क्रीन में घणो भगत बिता रहे है, तो वन ने कपड़ा और रंगा री पारंपरिक दुनिया से जोड़न वास्ते आप काई प्रयास कर रहे हो या फिर वाने जोड़नो कितो दोरो काम है अब आर के टाइम में?
0: अरे ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे से। मैं मेरी जो सफलता है जो पिछले कुछ सालों में मुझे मिलती जा रही है और मैं आगे बढ़ रही हूँ, वो उसका मैं श्रेय सोशल मीडिया को ही देना चाहूंगी। तो देखिए इससे मैंने और मेरी टीम ने और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से इसी से फायदा उठाया है। सोशल मीडिया के तो दोनों ही फायदे भी है नुकसान भी है।
1: हाँ वो
0: तो
1: तो
0: मैं तो लोगों से चाहूंगी कि जैसे ही यदि इस तरह की कुछ क्रिएटिव चीज आपको देखने को मिलती है तो सोशल मीडिया ही मुझे आगे बढ़ा रही है, उन लोगों से कांटेक्ट करा रही है और वो लोग मेरे से सीख रहे हैं।
1: कला ने एक थेरेपी भी मानी जावे, तो कहीं आपने भी कदी महसूस हुई हो कि आज की फैब्रिक पेंटिंग या सीखने के बाद में महिला वालों जो को मानसिक तनाव हुआ करे या स्वभाव हुआ करे वीर मायने कोई बदलाव आयो?
0: जी ये बहुत बहुत सही कहा आपने। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिनका मन नहीं लगता था, जिनको ऐसा लगता था सब बेकार है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेंटिंग की दुनिया में कदम रखा और मेरे से जब वो लोग जुड़े और उन्होंने काम शुरू किया, तो जो लोग 5 मिनट बैठ नहीं पाते थे, कुछ एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे, वो लोग 3 3 घंटे पेंटिंग कर रहे हैं और कहते हैं हमें समय का पता ही नहीं चलता है। और धीरे धीरे उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आया है और उनका प्रेम मिलना जुलना ये सारी चीजें भी बढ़ी हैं। तो मुझे तो ये एक थेरेपी ही लगती है कि जिसका ये रंगों का असर है। जी
1: बिल्कुल, अगर मानसिक तनाव में कोई है या कोई समस्या भी नहीं है मेंटली, तो कोई थेरेपी रिजिया काम करे तो आपा कोई भी कला रे मायने बिजी हो जाओ तो आपा है जो कहां से बच सका, मानसिक तनाव से दूर हो सका।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो कहती हूँ कि ये थेरेपी डॉक्टर्स और ये लोग भी बहुत कम अपना रहे हैं, मतलब अपना तो रहे हैं लेकिन यदि इस चीज को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जाए तो लोगों को बहुत फायदा मिलेगा।
1: बिल्कुल सर, और
0: जी
1: एक कला टीचर होने नाते आप नया सीखने वाला ने कौन सी एडी गलतियां बतानी चाहो जो कि फैब्रिक पेंटिंग करते टाइम हो जाया करे?
0: देखिए इसमें ना कुछ फिक्स टेक्निक्स होती हैं। यदि आप टेक्निक्स को मान पालन करते हुए और अपने काम को करते हो तो आपको कभी कोई चीज गलत नहीं मिलेगी। और सबसे मेन चीज है रंगों का चुनाव, आप कैसा कर रहे हैं और
1: बिल्कुल
0: किसके लिए कर रहे हैं, सामने वाले की क्या चॉइस है। यदि उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं
1: बिल्कुल
0: और आपको फिर कोई भी मतलब गलती नहीं नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि हाँ जिसके लिए अपन ने बनाया है यदि वो खुश है तो ऐसा लगेगा वाओ ये तो अपन ने क्या चीज बना कर दे दी। जी
1: बिल्कुल अनुराग जी, कला से जुड़ी बहुत सी चोखी जानकारी आज आप दी हो, तो चाहता चाहता
0: जी
1: सगली बहना ने श्रोता मैंने जन क्षेत्र में आनी चाहे फैब्रिक पेंटिंग की दुनिया में कदम रखनी चाहे वाने काई सलाह देनी चाहो आप?
0: मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि धीरे धीरे करके जो भी सखियों को इसमें इंटरेस्ट है तो वो अपनी इस लाइन में जरूर आगे आएं और कला के क्षेत्र में कदम रखें। बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई बहुत बहुत बड़ी चीजें नहीं है। आपकी हो सकता है 2 4 दिन की प्रैक्टिस से आप इस लाइन में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं और आगे अपने लिए अपने परिवार के लिए। हमको किसी को गिफ्ट देना है तो हम अपने हाथ की बनी हुई चीज भी दे सकते हैं। तो इस क्षेत्र में बहुत बहुत अच्छा है, बहुत फायदा है और मैं तो चाहूंगी कि सभी लोग जरूर जरूर इससे जुड़े।
1: बिल्कुल अनुराग जी, आपकी बात सुनर और लागे कि हुनर कोई रे पहचान री मोहताज को नहीं, और आज आप साबित कर दियो कि एक महिला अपनी रचनात्मकता सु भी खुद रे साथ साथ समाज ने भी रंगीन बना सके।
0: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं।
1: बिल्कुल, आज आपका
0: थैंक यू
1: बहुत बहुत आभार अनुराग जी कि आज आप टेम निकाल श्रोतावा ने और विशेषकर सखिया ने आत्मनिर्भर बनने री राह दिखाई। इनके वास्ते पूरा जोधपुर आकाशवाणी परिवार की तरफ से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
0: पूरी जोधपुर आकाशवाणी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद, सुनने वाले श्रोताओं को मेरा धन्यवाद और इस फैब्रिक पेंटिंग की कला से सभी लोग जुड़े यही मेरी आशा है। थैंक यू।
2: तो आभार आपा सुनी फैब्रिक पेंटिंग कलाकार अनुराग जैन सु कोमल राठौड़ री फोन माथे बातचीत, और अब आपने सुनावा एक प्यारो सो गीत।

0: बेग भी बने, कोटी, शेरवानी, सब जगह छोटी छोटी जड़ी भी चीजें हैं, बाद में वो जो को काम है वो देखने मिले।
1: बिल्कुल। और जहाँ की आप बात करी हो दबकारी, यूं इच गोटा पत्ती रो काम भी बहुत पुराणो काम है। और राजस्थान री पारंपरिक कढ़ाई री तकनीक है, जिनमें सोने चांदी या कॉपर रे गोटा रा छोटा छोटा टुकड़ा ने अलग अलग आकार में, जहाँ फूल पत्ती रे डिजाइन में काट र कपड़े पर सिलियो जावे है। और ई गोटे ने लेस या रिबन रा रूप में बॉर्डर या किनारी पर जब साड़ी या दुपट्टे या लहंगे पर लगायो जावे, तो इन्हें गोटा किनारी भी कया करे है। और ई गोटे री ही पतली पतली महीन जकी लच्छिया सी दिखा करे, वाने आपा सीखे रे रूप में जाना। हाँ, जीसु भी सुंदर सुंदर डिजाइना बना, कई तरह की पोशाक है जकी तैयार करी जावे है। पतली डोरी नुमा आने कह सका आपा सीखियो गोटो जको आवे है, वो भी कई तरीके रो आया करे है। पहली खरो होतो हो, सोने चांदी रो, तांबे रे तार रो। आजकल है जको आर्टिफिशियल भी मिल जाया करे है, और तांबे रो सीखियो भी बहुत काम में आया करे है। क्योंकि आजकल सस्ती पोशाक भी कई लोगों ने चाहे जावे भी हिसाब हूँ, आजकल तरह तरह करो सीखियो आन लागियो है। और इनमें कई तरह रा आपने कलर भी मिल जावेला, जहाँ गोल्डन है, सिल्वर है, रोज गोल्ड है, कॉपर है, पीच है, कई रंग रा आपने सीखिया गोटा मिल जाया करे है। और इन्हें आप हाथ सू भी लगा सको हो, और मशीना सू भी आप डिजाइन पर ट्रेस कर ड्रेस जो है बना सको हो। और साथ ही साथ गोटे रो एक प्रकार है होया करे है लफ्फार लफ्फी, लफ्फा जको चौड़ो और भारी गोटे रो बॉर्डर होया करे है, जो लहंगे ओढ़ने या बॉर्डर पर लगायो जावे है, जिको थोड़ो चौड़ो होया करे है। आमतौर पर इरी चौड़ाई 4 से 7 इंच होया करे है। और बठे लफ्फी है जकी वह थोड़ी पतली होया करे है। और इन्हें ज्यादातर आपा जो है लफ्फे रही अगल बगल में या कुर्ती कांचली री बावा में ओढ़नी रे किनारा पर आउटलाइन देने रे वास्ते लगाया जाया करे। और सीकर रो जको खंडेला गाँव है, वो गोटा पत्ती और लफ्फे रे काम रे वास्ते घणो ही नामी है।
0: बिल्कुल नामी है। और आप गोटा पत्ती की बात ही करी हो तो देखो गोटा सीखियर जी दिखन वालों पिटन वर के हुआ करे, हालांकि बा सीखियाँ कौन बनो डो रहे, लेकिन बा पीटा कढ़ाई जकी हुए बा कपड़ा पर जद पहली तो वीर माई ने जको तार है वो ओके रहे, बिग बाद में बिन पीट पीट आकार देवे तो बिन पिट्टा कढ़ाई किया करे, तो आप बहुत ही खास हुए, आकर्षक भी हुए और पारंपरिक भारतीय कला इन्हें माने। और आज की कला है बा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और सहारनपुर से शुरू हुई है, और वर्तमान टाइम ने देखता राजस्थान रे मायने जयपुर जो को है ई डिजाइन रो सबसे बड़ो केंद्र बनेडो है, और वो जो को काम है वो ज़्यादातर प्रीमियम लुक देवन वालों फैब्रिक माते करियो जावे। और जियाँ कि दुल्हन रा लहंगा है, ब्यावरी साड़ियाँ हैं, हेवी अनारकली है, शेरवानी है, और आज की डिजाइन है इन्हें पीट रा डिजाइन बनाई जावे इनके वास्ते इरी जो की कढ़ाई है बा चुभे कोनी और बहुत ही क्लासी और रॉयल टच डिजाइन आ देवे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: तो शीतल जी अब आप सब ने बता रहा है अपने जका कपड़ा हुए बा पर किन किन तरह रो जो वर्क है काम है वो हुआ करे तो इन्हीं आगे बढ़ाओ तो आप सगड़ा ने बतावा कि अबार जो को ट्रेंड में चल रहे है वो है डंका वर्क। और डंका वर्क रो जो को काम है वो राजस्थान रा मेवाड़ यानी उदयपुर या एक बहुत ही दुर्लभ शाही और लगभग 400 साल पुरानी धातु री कढ़ाई कला है जिरे मायने पुराना टाइम में तो कहें तो सोना या चांदी री जकी धातु होती वी छोटी छोटी चौकोर पत्तियां बना या प्लेट बनाता जिन्हें डंको कहवे अभी कपड़ा माते टांको लगा डिजाइन देर जड़ियो जाओ तो। लेकिन अब कहीं है जिकी ये प्लेटा हुए पत्तियां हुए आर्टिफिशियल भी चाल गई या ज्यादातर चांदी रा डंका बना भी ऊपर सोना रो पानी चढ़ा इन्हें तैयार करे और तांबा रो भी आपने देखने ने मिले वो काम थोड़ो महंगो है और वजन भी भारी हुए इनके वास्ते उपयोग पोशाक कार्य मायने दुल्हन रो जो को लहंगो है बिरे मातो करियो जावे और ज्यादातर सूरज है चांद है मोर केरी री डिजाइन ना बनाई जावे। और आजकल आप देखा है यहाँ की चांद री पोशाक है जो की काफी ट्रेंड में चल रही है।
4: बिल्कुल और कमल री डिजाइन भी हाँ, देखने मिल जाए
3: बिल्कुल डंका माथे सब ज्यादा देखने मिले तो जो की शुद्ध धातु है और ज्यादा तेज मेहनत मान लो जाए इन वजह से वो काम महंगो भी है और गिने चुने कलाकार भी है जो की आपकी पारंपरिक हुनर जिंदो रखने वास्ते आज रो जो को आधुनिक टाइम है वे कलाकार लुप्त होती कला ने दोबारा नयो फैशन है नयो वेस्टर्न ड्रेस है या डिजाइनर है साड़ियां है वह सब रे मायने थोड़ी थोड़ी कलाकारी है जकी उकेर रिया है। और आ डिजाइन री जकी 3D चमक हुए बा कोई भी नकली सितारा या नगमे है जकी कोनी देखने मिले।
4: बिल्कुल और एनी तरीके की सलमा तारी रो काम है जको वो भी अपने ठहरी एक पारंपरिक भारतीय कढ़ाई री कला है। ये काम में भी सोने चांदी रे चमकीले और स्प्रिंग जड़ा मेटल रा जका तार होता है वारो उपयोग कर कपड़े माते शानदार डिजाइन बनाई जावे है। आजकल कॉपर या मेटल कोटिंग रे तारा रो इस्तेमाल भी होने लग गयो है तो सलमा रे साथ ही साथ सितारा दबका मोट तीर कसब कसाब रो जको काम होया करे है वो इन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया करे है। और सलमारे काम वास्ते ज्यादातर आपने जको कपड़ों काम में लेना चाहिए वो है सिल्क साटन या वेलवेट रो कपड़ों क्योंकि इनमें वो काम है जको वो और भी ज्यादा खिल जाया करे है और मजबूत भी रहा करे है। साथ ही साथ जरीरी बात करा तो जरीरी जकी कढ़ाई होया करे है वह धागा सू बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाई जावे है। जरीरी साड़ियां भी आवे पोशाका भी है सलवार सूट है शेरवानी है आपने हर ब्याह शादी रे मौके में देखने मिल जावेला। और जरीरे मायनी आप कई तरह रा फुलारी डिजाइन पत्यारी डिजाइन और साथ ही साथ जरीरो ही प्रकार कह सका जरदोजी है जको कामदानी वर्क है वे भी रे प्रकार में ही आया करे है। और वो काम सिल्क रेशम मखमल जॉर्जेट और ऑर्गेन्जा माते बहुत ही सुंदर लग गया करे।
3: बिल्कुल आज जको वर्क है वो सदाबहार तो रे वही है साथ ही साथ ई वर्क रे साथ ही एक ट्रेंड और अभी चल रहे है वो है मुकेश वर्क रो मुकेश वर्करी ओढ़निया ले लो चाहे मुकेश वर्करी पोशाक ले लो आजकल तो आप देखा कि बंधेज रे साथ भी मुकेश वर्क करियो जावे तो

वो जो कि पुराना टाइम में जो कि वर्क हो वो सोना चांदी या फिर सोना चांदी का जगह चपटा तार होता बस वो काम है जो को करो जाओ तो सबसे पहले कपड़ा ने फ्रेम पर बांध नील या चौक सो डिजाइन बना सुई में तार पिरोर और कपड़ा सो आर पार निकाल मरोड़ एक छोटी सी गांठ या बिंदु इरे मायने बना देवे पच कांच या चिकना भाटा सो तारा ने रगड़ और चपटो बनावे और यही फूल पत्ती री डिजाइना भी आजकल बनाया करे तो आज की मुकेश वर्क री डिजाइन है वे भी बहुत ही बढ़िया लागे और आजकल आपने और न्यारे मायने आज की डिजाइन है देखने मिले।

आ बात तो ही चूंदड़ी री। तो अबे बात एक डिजाइन की और कर ला, जो कि कपड़ा माथे ही करी जावे और बाहे पेच वर्क और पेंटिंग री कला। पेंटिंग और पेच वर्क ने जब साथे करे तो एक अलग ही लुक देवे। और पेच वर्क है जो को आजकल बहुत ही ज्यादा चलन में चल रहे है, जिरे माई ने पुरानी पोशाक ने दूसरी पोशाक पर ट्रांसफर करे। और बात आपा शुरुआत कलमकारी सु करा, तो आंध्र प्रदेश री जकी प्राचीन कला है, जिमें बांस री तीखी कलम और प्राकृतिक रंगा री मदद सु कपड़ा पर पौराणिक कहानियां और देवता रा चित्र बनाया जावे। और अगर पेच वर्क री करा तो एप्लिक वर्क भी इन्हें कहवे और पेच वर्क भी इन्हें कहवे, जकी ओडिशा और राजस्थान रो प्रसिद्ध काम है। इरे मायने अलग अलग रंग और अलग अलग आकार रा कपड़ा का टुकड़ा ने काट एक खास या मुख्य कपड़ा माथे इन्हें सिल दियो जावे, जिसू वो कपड़ो है या वा पोशाक है बा अलग ही शाही लुक देवे। और एक और कला है जिकारो नाम है रोगन आर्ट, जका गुजरात रे कच्छ री एक दुर्लभ कला है, जिरे मायने शीतल जी जो को अरंडी रो तेल हुए और जका प्राकृतिक रंग हुए वासु एक पेस्ट बनावे और एक धातुरी एक तिल्ली आया करे।

0: कपड़ा पर बिना छूया उकेर्यो जावे।
1: बिल्कुल। और कोमल जी, इनके साथ ही अपने अठे रंगाई छपाई रही भी बहुत सारी तकनीका है, वह पुराने टाइम से ही काम में ली जा रही है। जान की ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करा तो लकड़ी रे ठप्पा सु कपड़ा पर छपाई ने ब्लॉक प्रिंटिंग कया करे है। इनमें भी कई तरीके रा प्रिंट अपने देखने ने मिलिया करे है, और भी अलग अलग री डिजाइन और रंग संयोजन इनरे मायना देख सको हो। बगरू सांगानेरी प्रिंट अपने अठे बहुत ही नामी है, और जयपुर इरो प्रसिद्ध केंद्र भी है। और यूं ही जब बाटिक प्रिंट की बात करा तो कपड़े पर मोम सू डिजाइन बना फिर रंगियो जावे है, और पछे मोम ने हटा दियो जावे जिसु सुंदर डिजाइन है जकी उभर जाया करे है। जटे जटे मोम रहा करे वटे वटे कलर नहीं चढ़िया करे है। और इरे साथ ही इनमें मोम री जगह गेहूं रो भी बिंधन रो भी काम में लिया करे, और भी कई तरीके री चीज है जो कि काम में ली जाया करे।
0: बिल्कुल। और प्राकृतिक रंगासू या ज्यामिति पैटर्न रो उपयोग कर अजरक प्रिंट भी एक कपड़ा पर रंगाई रो काम करे। इरे मायने ब्लॉक प्रिंटिंग री बहुत पुरानी कला है। साथ ही साथ जो दाबू प्रिंट है इमें मिट्टी और गोंद और चूना रो जो मिश्रण हुआ है इरो उपयोग कर कपड़ा रा कुछ हिस्सा ने रंगन सू रोक्यो जावे और एक अलग प्रिंट है जो कपड़ा ने दियो जावे। यहाँ कढ़ाई भी कई तरह री कढ़ाई भी है जो कि कई तरह री वे जियाँ की कशीदाकारी है कश्मीरी कढ़ाई है जिरे मायने प्राकृतिक कला से जुड़ेड़ा फूल पत्ती री डिजाइना बनी जे। सृजनी कढ़ाई है जकिर में बिहारी पारंपरिक कला मानी जे। कसूती है जकि कर्नाटक री बहुत पुरानी कला है।
1: बिल्कुल। और अब बात करें राजस्थान और गुजरात री प्रसिद्ध कला बंधेज कला री, जो पूरे देश में आपन आपरी विशेषता रे वास्ते जानी जे है। और बंधेज रो मतलब ही होया करे है बांधणो, कपड़े ने धागे सु बांध रंगने री कला है बंधेज। बंधेज री प्रक्रिया में कपड़े रो चुनाव जिनमें ज्यादातर सूती लीनन मखमल कैम्ब्रिक सिल्क या रेशमी कपड़ों लेनो चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: और इन्हें पहली धोर सुखा देनो चाहिए जिसु रंग पक्को और चमकदार चढ़िया करे है। और पछे ही कपड़े ने प्रेस कर इरी सलवटा निकाल देवो, पछे कपड़े में गांठा लगार धागा सु बांध डिजाइन बनाई जावे है, पछे इन्हें रंगियो जावे है। और बंधेज री खासियत आ है कि इनमें अनगिनत डिजाइनर रंग संयोजन आपने देखने मिल जावेला। शायद ही आई वजह है कि आज इतने साल बाद भी ई कला री लोकप्रियता आज भी लोगों रे बीच में है, और इरी डिमांड भी आज बहुत ही ज्यादा बनी उड़ी है। आपने अठे बीकानेर जोधपुर और जयपुर ई कला रे वास्ते खासा जानिया जा जावे है। और पारंपरिक बंधेज री साड़ियाँ सूट पोशाक ओढ़ना और आजकल तो शर्ट में भी जो है बंधेज चाल रियो है। और इनरे साथे साथे ही बात करा टाई डायरी इरी तो आ भी रंगाई री एक पारंपरिक तकनीक है। ये तकनीक में कपड़े ने रंग लगाने सु पहली कई तरीके सु मोड़ मरोड़ और धागा सु बांध रखियो जावे है जिसु मुड़ोड़े भाग पर रंग कोनी चढ़िया करे है। और ई तरीके सु एक तरीके री डिजाइन या पैटर्न बन जावे है जिनमें आप गोलाकार ले लो या सर्पिल आकार रो या मार्बल या शिबोरी पैटर्न इनमें आपने देखने मिलिया करे है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगे है।

0: बिल्कुल, लाइक कपड़ा अच्छा लुक वास्ते जरूरी वे कि भी की क्वालिटी केड़ी है और केड़ी क्वालिटी कट काम आवे, कौन सा मौसम में केड़ो कपड़ो आपने पहनना चाहिए। और कई तरह का फैब्रिक है जका आपने अठे हुया करे जका पर आपा कपड़ा बनावा, तो थोड़ी सी बात अगर आपा कपड़ा री क्वालिटी री कर लें कि किन किन तरह री क्वालिटी हुया करे। अगर डेली वियर री बात करें तो कपड़ा ने प्राकृतिक फैब्रिक जको हुए वो कॉटन रोवे, सिल्क रोवे, लिलन रोवे, जकर मायने सिंथेटिक फैब्रिक री अगर बात करें तो वो है पॉलिस पॉलिस्टर और नायलॉन और जॉर्जेट और सिफोन और मिक्स और सेमी सिंथेटिक फैब्रिक हुए जका लकड़ी रा गुद्दा सु बनाया जावे और धोन रे बिल्कुल मुलायम और वजन रे अनुकूल भी एरिया करे। और अगर भारी पोशाक की बात करें तो बार वास्ते अलग बोले कि अलग तरह क्वालिटी रा जो का कपड़ा हुए बे आया करे।
1: बिल्कुल, अगर बात करा देखो पोशाकारी तो प्योर साटन है जको सबू उपयुक्त कपड़े मान्यो जावे है, क्योंकि इनमें ऊपरी सतह है जकी बहुत चमकदार और चिकनी होया करे, जिसु काम है जको वो बहुत ही खिल राया करे। खासकर गोटा पत्ती पिट्टन वर्क जो है वो मजबूती सु इपर टिक्यो भी रहवे है। और साटन में भी आपने कई तरह की साटन मिल जावेला, जहाँ गाजी साटन है, सिल्क साटन है, सामू साटन है, जो महंगे और भारी कपड़ा वास्ते काम में ली जावे। यूं ही क्रेप्रो कपड़ो है जको वो थोड़ो सो दाणोदार पण लचीलो होया करे है, जो घेरदार पोशाक और कड़ी वाला लहंगा और अनारकली सूट वास्ते बहुत ही बढ़िया रहया करे है।
0: बिल्कुल। और चंदेरी सिल्क आवे जकी सूती और रेशमी धागा रा मिश्रण सु बनी जे पारंपरिक पोशाक इन मु बनावे। टिश्यू फैब्रिक है जका सु भी पोशाक बने, ओपाड़ा सिल्क, डोला सिल्क, आंसू बुटीक वाला सूट और पोशाक बनी जा करे। और प्योर वेलवेट है जको मखमली और मोटो कपड़ो है जका सर्दियां री शादियां वास्ते काफी उत्तम रिया करे।

तो अब चालता चालता देखो, इतनी जानकारी तो आपने दे ही दी हाँ, तो अब थोड़ी सी जानकारी जो है सवाल सवाल जवाब रे माध्यम सु आपने श्रोतावा ने देवा कि किन तरीके रा फैब्रिक है जका आपने भारत में

0: जाने जावे है और क्यों फेमस है।
1: बिल्कुल
0: तो आंसू जुड़ियोड़ा, एक सवाल मैं आपू करूँ और एक सवाल आप मारूसू करूँ।
1: शीतल जी, आप मन बताओ कि असम में वो कौन सो सुनहरो रंग है जो को दुर्लभ रेशम है, जो को पूरी दुनिया रे मायने सिर्फ असम में पायो जावे, जिन्हें बार बार धोन सु भी बिरी चमक है जो कि बढ़ती ही जावे।
0: मेरो नाम है मूंगा सिल्क, जो आपकी मजबूती और प्राकृतिक सुनहरा रंगा रे वास्ते जाने जावे है। अब आप मने बताओ कि बिहार री प्रसिद्ध कला रो नाम कई है, जेरे मायने कटा फटा सूती कपड़ा ने रिपरता ने जोड़ रंगीन धागो सु रजाई या चादर जो बनाया जावे है।
1: बिल्कुल, बिन के वे सुजनी कढ़ाई जिन्हें जीआई टैग भी मिलेड़ो है। तो आप बताओ कि हिमाचल प्रदेश रो एक प्रसिद्ध रुमाल है जिसे दोनों साइड एक जेडी कढ़ाई करी जावे, जो कि दोनों साइड सु एक जी ही दिखे।
0: वो हो गया करे है चंबा रुमाल। और उड़ीसा री प्रसिद्ध कला, जिनमें कपड़ा रे टुकड़ा ने काट र पाने एक दूजा रे ऊपर सील र सुंदर छतरियां और लालटीन बनाई जावे
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिन कहे पीपली एपली कला, जो कि कला है बा पुरी री जगन्नाथ रथ यात्रा ने सजाने के वास्ते प्रसिद्ध है। तो आप बताओ कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा री पारंपरिक कढ़ाई जी में पुरानी साड़ियाँ ने बॉर्डर सु धागा सु निकाल और कपड़ा माते जो कि है रंगीन टच सु सुंदर कलाकृतियाँ बनाया करे।
0: वे ने कह करे है कांथा कढ़ाई, जिरा आजकल सूट भी मिलिया करे।

0: बिल्कुल शीतल जी, आज आपा कपड़ा री रंग रंगीली दुनिया री अनमोल कलाया री बात करी, जिसु ओई आपा कह सका कि अठेरा जगह कलाकार हा, जगह कलाकार है बा हाथ कितना जादुई है, और जगह कोरा कपड़ा माथे भी जीवंत कला ने उकेर देवे, और कला और पहरावार माथे एक घनी चौकी केबत भी है कि आदमी री उपमा कपड़ा री कपड़ा सु और कपड़ा री जकी उपमा है बा कला सु, मतलब मन सारी जकी शोभा है बा कपड़ा सु हुआ करे, और कपड़ा री जकी असल शोभा है बा कारीगर री उकरेड़ी जकी कला कृत्या हुए भी सु हुए।
1: बिल्कुल, तो आज रो गणगौर विशेष कार्यक्रम में मैं ही आपरे साथे आपरी दो सखियां शीतल राठौड़ और कोमल राठौड़, और इन कार्यक्रम री प्रस्तुति ही राजेश लामरोड़ री, और संयोजन हो मनीष सोलंकी रो
0: इंद्र साथे ही धीरा वो आपरी दोनों सखियां ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।

0: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। दो पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी

0: इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमरीका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रूपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमरीका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई।

0: यह अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में 8 से 9 तपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। 9 तपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गो में शामिल खिलाड़ियों में मैगनस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4थे स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो

0: मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
0: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
1: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी आगे लिखते हैं।
1: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: छोड़
1: दीजिए। मेरे काम आओगे ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा। ठीक है ठीक है, जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूँ, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने? हम जिनसे आशा भी नहीं करते, वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंस

0: मुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
1: जवानों,
2: जी सर,
1: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
2: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
1: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
3: जी सर।
1: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
3: जी जनाब।
1: हाथ गोला हाथ में लो।
3: ले लिया जनाब।
1: अब पिन रिलीज करो।
4: फेंको,
3: फेंका जनाब।
4: अरे अरे, ये क्या हुआ,
5: ये क्या हुआ?
6: अरे बच्चों, बच्चों
4: फट जाओ,
6: सब निकल जाओ,
4: जमीन पर लेट जाओ,
6: निकल जाओ।
7: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
0: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
3: ये आदि क्या कर रहा है?
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
2: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
3: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
5: सही में
3: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
7: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
8: May I come in, sir?
2: Yes, come in.
8: Sir.
2: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
8: सर।
2: Well done, Adi. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
8: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, कहो।
8: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
2: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
8: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
2: गो अहेड यंग मैन।
8: सर।
7: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
7: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
3: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को

0: किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
1: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
0: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर

0: उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
1: जी जनाब।
2: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
0: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर।
3: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
4: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
5: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरंग क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
4: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल

0: 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। कृपया हमारे अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा अब प्रारंभ होती है। अगला विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
2: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोह का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
3: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एज वी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द गणतंत्र भवन एट राष्ट्रपति भवन इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ डिग्निटरीज एंड द प्राउड रिसिपिएंट्स ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
2: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप जहां पर 1947 में स्वतंत्र भारत के

कैबिनेट ने शपथ ली थी। ठीक यहां पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे पांचवी शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा जो कि गंधार शैली में बनी है और ठीक बीच में यहां पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतीकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: Shri Dharmendra served as a member of parliament in the 14th Lok Sabha, representing the Bikaner constituency in Rajasthan from 2004 to 2009. And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वॉयलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से आपने वॉयलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: Dr. R. Ganesh is also a prolific author, having more than 70 books to
1: Shri
2: his credit.
1: Bhagat Singh Koshyari, Lok Karya.
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वेयर ही वर्क्ड टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
1: विजय कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
2: Pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: Ramaswamy Palaniswamy, Chikitsa Gastroenterology.
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनीस्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
1: Shri
2: guidelines.
1: Shri Piyush Pandey, Marnoprant, Kala Vigyapan, unki patni Shrimati Neeta Joshi.
0: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2000

0: 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती है।
1: श्री पांडे वॉज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया।
2: पद्मश्री श्री विश्व बंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्व बंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
1: श्री विश्व बंधु वॉज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड रिमेन सो ओवर 6 डेकेड्स।
2: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खासतौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
1: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरब्यातान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
2: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Vadan.
0: Jaisalmer ki Tagaram Bhil अलगोजा बजाते हैं। कितना सुंदर साज जो कि शीशम और कैर की सूखी लकड़ी से बना होता है। इन्होंने जैसलमेरी पट्टू पहना है और ऊपर जैसलमेरी साफा चुंदड़ी का।
1: श्री तगाराम इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। ही हैज रिसीव्ड अ महरावाल गिरधर अवार्ड इन 2013 बाय महरावाल गिरधर ट्रस्ट जैसलमेर एंड मेनी मेनी अदर अवार्ड्स।
2: हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट।
0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the growth.
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya Evam Shiksha.
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Nilkant.
2: Shri Kumar Bose कला तबला।
0: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
1: Shri Bose's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect
2: Shri
1: within the artistic
2: Janardhan
1: community.
2: Shri Janardhan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
0: Mashhoor Samajik Karyakarta hain Bothe ji, 77 saal ke hain. और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
1: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
2: Swami Brahmadev Samaj Seva.
0: Swami Brahmadev 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र

0: के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है.
1: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
0: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है. राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए इस संत पद्मश्री से सम्मानित होता हूँ.
2: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय.
0: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बूम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है.
1: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी.
2: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा.
0: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है. वन दादी नाम से जानी जाती हैं. 3,000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अलगुआ से आती हैं.
1: श्रीमती देवकी अम्मा रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस फॉर ग्रोइंग प्लांट सैपलिंग्स एंड यूज्ड मल्चिंग ऑर्गेनिक मैन्योरिंग फ्रॉम होम कैटल, केयरफुल रिटेंशन ऑफ लीफ लिटर एंड थॉटफुल वाटर मैनेजमेंट. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले, चिकित्सा.
0: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
2: डॉक्टर
0: सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है.
1: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Srimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
2: Srimati Sunita Godbole.
0: ये भी कितना गौरव का क्षण है. उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले. एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ. आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है.
2: श्री तेची गोबिन, समाज सेवा.
0: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गोबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए.
1: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021, विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान. He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security
2: needs. Dr. H. V. Hande, Chikitsa.
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है. मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं. लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है. राष्ट्रपति जी की ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए.
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. P.C. Roy Award.
2: Shri Ghafruddin Mewati Jogi, Kala Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं. इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं, जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं, और खास तौर पर महाभारत और कृष्ण

0: लाली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
1: Went through his sustained artistic practice, Shri Ghafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research including PhD level studies.
2: Shri Mir Hazi Qasim, Kala Dholak.
0: 75 साल के मीर हाजी कासम इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं। आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
1: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
2: Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध है।
1: ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड मेनी आर्टिस्ट फेस्ड हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, श्री खेड़कर स्टूड अप एज अ स्टॉन्च एडवोकेट। He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
2: Shri R. Krishnan Kitna, Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
0: R. Krishnan Kitna, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था। आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
1: श्री आर कृष्णन कितना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज
2: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला म्यूजिकोलॉजी।
0: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और खास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉर्न में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
2: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा।
0: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: Well, Professor Mamidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
2: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
0: Aur ab bari is 23 varshiya khiladi ki T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
1: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रैंड प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर्स सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
2: श्री के विजय कुमार, सिविल सेवा।
0: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई, श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%। As additional DG law and order, he strengthened public safety.
2: Deva Lard, Dada Lard, Krishi.
0: देवा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
1: श्री रंग देव बालनार इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टिवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया।

0: He had done research work in Jawar and Tur as well.
1: Shri Anke Gowda M. Samaj Seva.
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है.
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 years यूजिंग हिज एंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन कन्नड़ा इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु एंड सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa Cardiology.
2: 69 वर्षीय Dr. Mandal, Interventional Cardiologist. अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है.
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Buddh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
2: भारतीय पुरातत्व विज्ञान के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में.
0: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20
1: excavations. Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
2: Organ Man के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है. खासतौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है.
0: श्री मांडलेवाला He has a long-term vision that by 2047, no citizen should lose life because of the non-availability of organs. For that, he has traveled extensively across India.
1: Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sahitya Evam Shiksha.
2: लुप्त प्राय जनजातीय आवाजों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाजों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने.
0: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University, and Russia's Academy of Sciences.
1: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, Kantha Embroidery.
2: Kantha? ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है.
0: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. शी इज ऑल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय कन्फरिंग ऑन हर द बंगश्री अवार्ड.
1: हरि माधव मुखोपाध्याय कला थिएटर उनके पुत्र श्री कृष्णेंदु मुखोपाध्याय.
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक नाटककार और अभिनेता थे. 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया. उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु मुखोपाध्याय.
0: श्री मुखोपाध्याय
1: श्री सत्य नारायण नंदलाल नुवाल व्यापार एवं उद्योग.
2: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं. आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से.
0: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
1: Shri K. Pajanivel, Khel, Silambam.
2: सिलंबम 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है. इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल.
0: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy presented by the Honorable President of India in 2023. And He also founded the Mamalan Silambam and Folk Arts Development Club.

0: in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
1: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
2: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते राष्ट्रपति जी खुद अपने आप से आकर श्री पंड्या का सम्मान।
0: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
1: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
2: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
0: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1988 as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
2: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra aise sevakon ka rini hai.
0: His work earned him the Vishwa Hindi Samman.
1: Shri Gari Mela Bal Krishna Prasad Marnoprant Kala Gayan, unke putra Shri Gari Mela Anila Kumar.
2: Anila Kumar unke vyah par legi ye puraskar. Gali Mela Bal Krishna Prasad 78 varsh ki umr mein ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
0: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
1: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
2: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खासतौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
0: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
1: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
2: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गेस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
0: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several
1: Deepika Reddy, Kala Nritya.
2: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
0: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
1: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
2: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
0: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
1: Shri Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
2: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. Aur हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रीय कला का प्रशिक्षण भी दिया है।

0: माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करते हुए
1: श्री हरिचरण सैकिया परफॉर्म सत्रिया डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑल्सो ही परफॉर्म द बरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948.
2: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री
0: 86 साल के शास्त्री जी
2: साहित्य एवं शिक्षा
0: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए
1: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
2: Professor Shafi Shauk, Sahitya Evam Shiksha.
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं, और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है प्रोफेसर शफी शौक।
1: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
2: श्री बलदेव सिंह खेल हॉकी कोच।
0: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
1: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाग मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी।
2: श्री यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री यमनाम बिशन भोर सिंह।
0: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
1: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
2: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
0: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस contribution के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
1: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
2: श्रीमती शिव शंकरी साहित्य एवं शिक्षा।
0: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की, आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, खास तौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज्यादा उपन्यास, 40 से ज्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
1: श्रीमती शिव शंकरी कम्प्लीटेड हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एज अ यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रिफ्लेक्टिंग हर अर्ली एकेडमिक एक्सेलेंस। शी वाज आल्सो सिलेक्टेड एज द वुमन ऑफ द ईयर 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
2: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
0: Sridhar ji, आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
1: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस simultaneously through 200 radio stations. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour education

0: national television channel.
1: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kala Azar.
2: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिसिन के मानद प्रोफेसर हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
0: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM
1: एंड डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा समाज सेवा।
2: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
0: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
1: श्री एन स्वामीनाथन कला भक्ति संगीत।
2: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
0: He became a master of the art and served as authorer in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
1: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
2: Dr. Thakral, आयुर्वेदिक पद्धति के शल्य चिकित्सक हैं और भारत में क्षार सूत्र चिकित्सा के माध्यम से कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन की आगे बढ़ाई है।
0: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
1: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
2: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। पुरस्कार प्राप्त करते हुए उनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
0: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज।
1: श्री अरविंद वैद्य कला थिएटर।
2: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है। काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
0: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
1: Professor
0: very adaptable.
1: Professor Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
2: Professor Juzar Vasi, IIT Bombay mein Professor Emeritus hai. Aur aapne micro इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक से क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
0: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस। ही हैज पब्लिश्ड अबाउट 200 पेपर्स इन लीडिंग जर्नल्स।
1: डॉक्टर नारायण व्यास पुरातत्व विज्ञान।
2: डॉक्टर नारायण व्यास विश्व के सुप्रसिद्ध

0: गुजरात तत्वविदों में से एक है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Wakankar Award from the government of Madhya Pradesh in 2019.
2: Gambhir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
0: गंभीर सिंह जी दार्जिलिंग पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री शिक्षाविद पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग अ पैशनेट एडवोकेट ऑफ साइंटिफिक टेंपर एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस ही लेड अ सिक्स ईयर कंजर्वेशन मूवमेंट दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस।
2: श्री हैली वार समाज सेवा।
0: अब बारी हैली वार जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है।
1: श्री वार हैज स्पेंट मोर देन 50 इयर्स नर्चरिंग एंड बिल्डिंग द आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिजेस of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: Aur ab Sachiv Mahoday aate hue, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का और राष्ट्रपति
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। धन्यवाद।

0: we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए.
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side.
1: बचे हुए
2: second part of the ceremony
1: किए जाएंगे. आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूलें. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह और हेमराज मीणा. ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार. मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस. नमस्कार.

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन।
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: मीडियम वीवो 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल।

0: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। श्रोताओं, इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेज़ी में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है, इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण। खेल जगत, ये कार्यक्रम आज रात 10 बजे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। चौपाल सजेगी आज शाम 7 बजे और कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज सुनिएगा 7:30 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों का प्रसारण समय रहेगा आज रात्रि 8 बजे, रात्रि 9:30 और रात्रि 10:30 पर। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। आइए आपको सुनवाते हैं कल की सभा के मुख्य कार्यक्रमों का प्रसारण समय। श्री रामचरितमानस के भाग संख्या 7 आप सुनेंगे कल प्रातः 6:05 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन सुनिएगा कल प्रातः 6:15 पर। कुछ बातें कुछ गीत, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल प्रातः 7 बजे से।

महत्वपूर्ण जानकारियों का डेली डोज यानी कि कार्यक्रम नमस्कार आप सुन सकेंगे कल सवेरे, क्षमा करें, कल प्रातः 8:30 से। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत प्रसारित होगा कल दिन में 1:05 पर।

महिला श्रोताओं को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका का समय रहेगा कल दिन में 1:15। आकाशवाणी जोधपुर के युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी कल शाम 5 बजे से। हमेशा की तरह चौपाल सजेगी शाम 7 बजे से और कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज इसका समय रहेगा 7:30। श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मनचाहे गीत सुन सकेंगे आप कल रात 10 बजे से।

सुगम संगीत के कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दिन में 12:30 और कल सुबह 10:30 पर। श्रोताओं, यह था कार्यक्रम विवरण जिसमें आपने सुने आज की सभा के शेष और कल की प्रसारण सभा के मुख्य कार्यक्रमों का प्रसारण समय। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए आपको सुनवाते हैं देशगान।

0: श्रोताओं, आप समूह स्वर में सुन रहे थे देशगान। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय शाम के 6:20 हुए हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार रिले किए जाएंगे और उसके बाद आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने पद्म पुरस्कारान् प्रददाति। प्रशासनेन उक्तं यत् सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षा पत्र लीक प्रकरणे केन्द्रस्य एनटीए सीबीआई इत्युभाभ्यां प्रतिक्रिया याचिता। अपि च भारत ऋतु विभागेन आगामिषु त्रिषु दिनेषु दिल्ल्यां उष्णतरंगस्य स्थित्यै पीतवर्णीया संचेतना प्रदत्तास्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे पद्म पुरस्कारान् प्रदत्तवती। पद्म पुरस्काराः देशस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारेषु अन्यतमाः सन्ति, यस्मिन् पद्म विभूषणः, पद्मभूषणः, पद्मश्रीः च अन्तर्भवन्ति। अद्य 26,000 वर्षे प्रथम नागरिक निवेश समारोहे राष्ट्रपतिना कलाक्षेत्रे अभूतपूर्व योगदानाय मरणोपरान्तं चलचित्र अभिनेतारं धर्मेन्द्र सिंह देओलं, वायलिन वादकं डॉ एन राजमवर्यं च पद्म विभूषण पुरस्कारौ, 6 पद्म भूषण पुरस्काराः, 58 पद्मश्री पुरस्कारैः सह 66 पुरस्काराः प्रदत्ताः। अवशिष्टाः पद्म पुरस्काराः पश्चात् नागरिक निवेश समारोहस्य द्वितीये चरणे प्रदीयन्ते। अस्मिन् वर्षे सर्वकारेण आहत्य 131 पद्म पुरस्काराणां घोषणा कृता अस्ति। सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। पश्चिमेशियायाः वर्तमानस्थित्याम् अद्य नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय संवादं सम्बोधयन्ती पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा डॉ सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे एलपीजी इत्यस्य शोधनागारस्य उत्पादनं प्रतिदिनं 50,000 टन परिमितं यावत् अस्ति।
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् भारतीय दूतावासः, वाणिज्य दूतावासश्च भारतीय प्रवासीनां कल्याणाय निरन्तरं सम्पर्करतौ स्तः। श्री जायसवालः अवदत् यत् मंत्रालयः गल्फ क्षेत्रे बृहत् संख्यायां स्थितस्य समुद्रीय समुदायस्य सर्वविध साहाय्यं प्रददाति। उर्वरक विभागस्य अपर सचिवा अपर्णा शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे उर्वरकानां समग्र भण्डार स्थितिः अपि सुखकरः एव।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर, कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और नौतपा शुरू होने के साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ा।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इस साल के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया। मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायलिन वादन के दिग्गज उस्ताद डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जिन जानी मानी हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें प्रदेश के भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती, समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज और अलगोजा वादक तगाराम भील भी शामिल हैं। श्री भील को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: अप्रैल 1960 को जैसलमेर जिले के मूल सागर गांव में जन्मे तगाराम भील ने 7 वर्ष की आयु में अपने पिता से अलगोजा वादन सीखना शुरू किया। तगाराम ने उस्ताद अकबर खान के सानिध्य में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने डेजर्ट फेस्टिवल और जैसलमेर कैमल फेस्टिवल सहित विभिन्न अवसरों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। तगाराम ने पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न देशों में आयोजित कार्यक्रमों में कला के रंग बिखेरे। उन्हें राजस्थान पर्यटन विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा नवाजा जा चुका है। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है।

0: है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गंगा दशमी के अवसर पर टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बीसलपुर बांध पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत जल पूजन किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से सक्रिय भूमिका निभाकर जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने की अपील की।
1: जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षित करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी साफ सफाई, उसमें काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि आज गंगा दशहरे के दिन ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है, आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है क्योंकि जल ही जीवन है।
0: मुख्यमंत्री ने ईसरदा बांध का भी हवाई सर्वेक्षण कर जल संरक्षण, जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। गौरतलब है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल 3 प्रमुख बांधों ईसरदा, गलवा और बंद बारेठा से गुजरता है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने भरतपुर के बंद बारेठा बांध पर भी जल पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में जल संरक्षण, जल संवर्धन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रदेश के अन्य जिलों में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले के सांगोद में, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली में, विधायक राजेंद्र भांबू ने झुंझुनू में और विधायक शैलेश सिंह ने डीग में इस अभियान की शुरुआत की। हनुमानगढ़ के लखुवाली हेड पर, बारां के मनिहारा तालाब पर, डूंगरपुर में गैप सागर पर, बांसवाड़ा के माही माता मंदिर पर, सिरोही और बालोतरा सहित विभिन्न स्थानों पर भी जल संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित लोगों को पानी बचाने की शपथ भी दिलाई। गौरतलब है कि अभियान के तहत 5 जून तक प्रदेश भर में जल संरक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गांवों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की साफ सफाई, श्रमदान, जल चौपाल, प्रभात फेरी और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी पत्नी जेनेट डी रूबियो के साथ आज जयपुर पहुंचे। वे सांगानेर एयरपोर्ट से सीधे आमेर महल घूमने गए। महल के जलेब चौक में उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। उनके स्वागत में लोक कलाकारों ने घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी नृत्य पेश किया। इस दौरान उन्हें आमेर के शीश महल, गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, सुख निवास और मावठा झील के बारे में बताया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री करीब आधा घंटे तक आमेर महल में रुके। उनका आज रात जयपुर में रुकने और कल सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान में 10,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने टिकाऊ और कुशल राजमार्गों के निर्माण के लिए समय पर परियोजना वितरण, कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के महत्व पर बल दिया। श्री गडकरी ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर रहेंगे। उनका आज रात बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। श्री शाह कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे महिला बैरकों का ई उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गृहमंत्री बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। उनका बीएसएफ जवानों से संवाद करने का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री के दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अब से कुछ देर बाद बीकानेर पहुंचेंगे। इससे पहले मुख्य सचिव

0: वी श्रीनिवास ने बीकानेर पहुंचकर गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली के तहत राज्य में परीक्षा केंद्रों का विस्तार किया गया है। संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अनुसार छात्रों की बढ़ती मांग को देखते हुए बूंदी और सीकर में दो नए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सेंटर शुरू किए गए हैं। संस्थान की ओर से बताया गया है कि इस परीक्षा प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी सुविधा के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे सकते हैं। नौतपा शुरू होने के साथ ही आज से प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ गया है। राज्य के अधिकांश हिस्से आज लू और गर्म हवाओं की चपेट में रहे। कुछ जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं रातें भी काफी गर्म बनी हुई हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा सहित सरहदी जिलों और पूर्वी जिलों में लू का प्रकोप रहा। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर आवाजाही कम रही। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी के कारण आम लोगों के साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं।
1: जिले में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। चिलचिलाती धूप के चलते लोग बेहाल हैं। तन झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण सड़कें और बाजार सुनसान हैं। धूप में काम करने वाले लोगों और अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को भीषण गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रही है। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। इस बीच लू और तापघात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम केंद्र जयपुर की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में अगले 4-5 दिन लू और गर्मी के ऐसे ही हालात बने रहेंगे। केंद्र ने कल जैसलमेर और बालोतरा में लू का ऑरेंज अलर्ट जबकि 18 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि इस महीने के आखिर में कुछ इलाकों में आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को तेज धूप में नहीं निकलने, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के डॉक्टर राकेश नागर ने आकाशवाणी को बताया कि प्रचंड गर्मी के दौरान शरीर में पानी की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए।
2: गर्मी में धूप में कम से कम निकला जाए। जो भी जरूरी काम है सुबह के समय और शाम के समय संपन्न किए जाएं। इस तरह के मौसम में देखेंगे कि आम का पना, कैरी का पना ORS की तरह से डिहाइड्रेशन का काम करता है। इसके अलावा पुदीने का शरबत, धनिया की चटनी जो काम में लिया जाता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस करता है। तो जैसे गुलाब का शरबत है और खस का शरबत है, इसका नियमित रूप से सेवन हम लोग कर सकते हैं जिससे कि डिहाइड्रेशन नहीं हो।
0: रेलवे ने ग्रीष्मावकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भावनगर टर्मिनस और शकूर बस्ती के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये गाड़ी 29 मई से 27 जून तक साप्ताहिक रूप से चलाई जाएगी। ये रेलगाड़ी आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रींगस, नीमकाथाना, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली कैंट सहित विभिन्न स्टेशनों पर राव करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर, कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और नौतपा शुरू होने के साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख प्रतापा राम ने तैयार किया है। फलौदी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात फिटनेस की। फलौदी जिला पुलिस ने कल संडे ऑन साइकिल अभियान आयोजित किया। इसके तहत पुलिसकर्मी थानों से साइकिलों पर रवाना हुए। उनका काफिला मेजर शैतान सिंह स्टेडियम पर पहुंचा। एएसपी बृजराज सिंह चारण ने बताया कि

0: स्टेडियम में योग सत्र रखा गया। पुलिस अधिकारियों और जवानों को विभिन्न तरह के योगासनों का अभ्यास करवाया गया। इस मौके पर सभी से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की गई। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत पानी बचाने के कामों को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने अभियान से पहले तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़े कामों को नियमित रूप से प्रगति पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। एसपी सतनाम सिंह ने बताया कि इसके तहत प्रभावी कार्रवाई की गई। 29 वाहनों पर काली फिल्म लगी होने पर चालान किया गया। वहीं वाहन चालकों से हमेशा यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने और जरूरी कॉल होने पर सुरक्षित जगह रुककर बात करने की सलाह दी गई। जिले में गैर संचारी रोगों एनसीडी की समय पर पहचान और बेहतर इलाज के लिए नई परियोजना शुरू की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम की ओर से ये परियोजना शुरू हुई है। सीएमएचओ डॉ. प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि प्वाइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट नाम की इस परियोजना में 30 साल से अधिक की आयु के लोगों की 10 तरह की जांचें निशुल्क की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आधुनिक पोर्टेबल उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इस पहल से गैर संचारी रोगों की जल्द पहचान और उपचार में सहायता मिलेगी। जिले में प्री डीएलएड परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिला समन्वयक शशांक दवे ने बताया कि इस परीक्षा के लिए जिले में 16 केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 8,900 से अधिक पंजीकृत परीक्षार्थी थे। परीक्षा में 84% से अधिक उपस्थिति रही। विभिन्न फ्लाइंग दलों ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। फलौदी में पिछले दिनों पुलिस ने नशीले पदार्थ बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 1 किलो से अधिक एमडी बरामद की गई। ये कार्रवाई बाप क्षेत्र के मोड़गिया गांव में की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके से बरामद किए गए रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर करीब 30 किलो से अधिक की ड्रग्स बनाई जा सकती थी। उन्होंने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी थाना अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फलौदी में रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बालोतरा और पोकरण मार्ग पर 3 नई बसों का संचालन शुरू किया है। डिपो के मुख्य प्रबंधक चंद्र प्रकाश पालीवाल ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती हुई परिवहन मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इससे आसपास के गांवों और प्रमुख शहरों के बीच आवागमन आसान होगा। साथ ही नई बस सेवाओं के शुरू होने से महत्वपूर्ण मार्गों पर कनेक्टिविटी मजबूत होगी। फलौदी रोडवेज बस स्टैंड पर पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से आपातकालीन मॉक ड्रिल अभ्यास भी किया गया। नागरिक सुरक्षा के लिए हुई इस ड्रिल में एयर स्ट्राइक की सूचना मिलने पर राहत और बचाव कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई। साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय का आकलन किया गया। मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस दल के साथ स्काउट, फायर ब्रिगेड, पुलिस, चिकित्सा और अन्य विभागों की टीमों ने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने पिछले दिनों राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता, पोषण स्तर और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने फलौदी और बाप क्षेत्र का दौरा कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं को भी जांचा। उन्होंने खराब हैंडपंपों और पाइपलाइनों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान री 3 प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवाजा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज टोंक जिलारा बीसलपुर बंधाऊ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू की नो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो 2 दिन रा बीकानेर दौरा सारू आज पधारण रो कार्यक्रम। काल सांचू सीमा चौकी माथे प्रहरी सम्मेलन माए शामिल फैला। और नौतपा सरू भवन सागई प्रदेश माए गर्मी रो जोर और बढ़ियों।

0: समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान री तीन प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार देर नवाजा। ई साल रा पहला नागरिक अलंकरण समारोह में 2 जना ने पद्म विभूषण, 6 ने पद्म भूषण और 58 हस्तियां ने पद्मश्री मानू नवाजी चा। देवलोक व्या फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल ने कलारा हलका में योगदान सारू पद्म विभूषण नवाजी चा। वायलिन बजावन वाला दिग्गज उस्ताद डॉक्टर एन राजम ने पद्म विभूषण सम्मानित करी चिया। पद्मश्री नवाजी जावन वाली हस्तियां में प्रदेश भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती, समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज और अलगोजा बजावन वाला तगाराम भीली शामिल है। सत्रह अप्रैल 1960 ने मूल सागर गांव में जन्मिया तगाराम ढंडा चराता था का वारा पिताजी 7 साल री उम्र में अलगोजा बजावन री सीख लेवनो शुरू कीनो। तगाराम उस्ताद अकबर खान आला दर्जा री सिखावन हासिल कीनी। वह डेजर्ट फेस्टिवल और जैसलमेर कैमल फेस्टिवल समेत न्यारा न्यारा मौका माथे कलारो दर्शाव कीनो। तगाराम पर्यटन विभाग री ओर न्यारा न्यारा देशा माए राखी जिया कार्यक्रम माई कलारा रंग बिखेरिया। माने राजस्थान पर्यटन विभाग समेत न्यारी न्यारी संस्थावां कानियों नवाजी चिया। राष्ट्रपति भवन माए राखी जिया जलसा माए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और मान्योड़ा लोग मौजूद रहा। ध्यानयोग है कि साल 2026 सारू 131 पद्म पुरस्कार दिया जावना है, जमाय 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। मान जलसारा दूजा दौर माय और हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवासी जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज गंगा दशमी मौके टोंक जिला रा बीसलपुर बंधाऊ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। मुख्यमंत्री बीसलपुर बंधा माथे रीति रिवाज जल पूजन कीनो। ई मौके वे कहो कि पानी जिंदगी री बुनियाद है और इन्हें बचावन सारू आ खास पहल है। मुख्यमंत्री जनता ई अभियान में शामिल भेर पानी बचावन री मुहिम ने सफल बनावन री अपील कीनी।
1: जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षित करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी साफ सफाई, उसमें काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि आज गंगा दशहरे के दिन ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है। आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है क्योंकि जल ही जीवन है।
0: मुख्यमंत्री ईसरदा बंधारोई हवाई सर्वे कर पानी न बचावन वाणा प्रबंधन और पाणा तू जुड़ी परियोजना वारा कामा रो जायजो लीनो। ध्यान जोग है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना रो फीडर चैनल 3 खास बंधा ईसरदा गलवा और बंध बरेठा निकला है। मुख्यमंत्री भरतपुर रा बंध बरेठा बंधा माथई जल पूजन कर अभियान री शुरुआत कीनी। ई मौके वे राज्य में पानी बचावन और पारंपरिक जल स्रोता ने और बेहतर बनावन रो राज्य सरकार रो वायदो दोहरायो। प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला में आई वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रा तहत कई कार्यक्रम राखी चिया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा जिला रा सांगोद माए, देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत पाली माए, विधायक राजेन्द्र भांबू झुंझुनू माए और विधायक शैलेश सिंह डीग माए ई अभियान री शुरूआत कीनी। हनुमानगढ़ रा लखुवाली हेड, बारा रा मनिहारा तलाव, डूंगरपुर माए गेप सागर रिपाल, बांसवाड़ा रा माही माता मिंदर, सिरोही और बालोतरा समेत न्यारी न्यारी ठोणा पानी बचावन जुड़िया खास कार्यक्रम राखी चिया। ई मौके जनता ने पानी बचावन री शपथ ही तिराईची। ध्यान जोग है कई अभियान रा तहत 5 जून ताई आखा राज्य माए पानी बचावन जुड़िया खास कार्यक्रम राख्या जावेला। गांवां माए कूड़ा बावड़ियां तलावां और पानी रा दूजा स्रोतां री साफ सफाई, जल चौपाल, प्रभात फेरी और पौधा रोपण सरीखा कार्यक्रम राख्या जावेला। अमरीका रा विदेश मंत्री मार्को रूपियो वानी जोड़ाए सागे आज

0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज राजस्थान में 10,000 किलोमीटर उम्बत्ता लंबा नेशनल हाईवे रा हालात रो जायजो लीनो व टिकाऊ और कुशल हाईवे बनावण सारू टेम सर परियोजना बनावण करड़ा गुणवत्ता मानका नी पालना करण और उन्नत प्रौद्योगिकी रा एकारा महत्व मथ जोर दीनो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो बीकानेर रा दो दिन रा दौरा सारू आज रात नाल हवाई अड्डा पूगण रो कार्यक्रम है। श्री शाह काल सांचू सीमा चौकी माथे रख्या जावण वाला प्रहरी सम्मेलन में शामिल भेला। इस दौरान वे महिला बैरकां रो ये उद्घाटन करेला। इस पाछे गृहमंत्री बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में अहलकारा सागर सरहदी हलकां री हिफाजत और विकास रे बारा में मीटिंग करेला। मारो बीएसएफ रा जवाना सा गई बातचीत रो कार्यक्रम है। गृहमंत्री रा प्रस्तावित दौरा न ध्यान रखता था का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही अब थोड़ी देर पछे बीकानेर पूग रहा है। इन पहले मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बीकानेर पूग और गृहमंत्री रा दौरा री तैयारियां रो जायजो लीनो। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान री ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली रा तहत राज्यमय परीक्षा केन्द्र री तादाद बधाई ची है। संस्थान रा क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर रे मुजब बूंदी और सीकर माए दो नुआ ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सेंटर खोली चिया है। राज्य माए फिलहाल जयपुर कोटा बीकानेर और उदयपुर माए ऑन डिमांड परीक्षा केंद्र है। रबे मौसम प्रदेश रा घनखर हल्का माए आज लू बाजी। नौतपारी सर्वात रा पहला दिन ही कुछ जिला माए दिन री बगत पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। जैसलमेर बाड़मेर और बालोतरा समेत सरहद रा कई जिला और राज्य रा उगनी हल्का माए लू रे कारण दोपहरारी बगत बाजारा माए और सड़का माथे आवाजाही कम रही। माणा बाड़मेर खबर नवीस बतायो कि तेज तावड़ा रे कारण मिनखा सागे जिनावरा और परिंदा नई घनी परेशानी वे रही है।
1: जिले में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। चिलचिलाती धूप के चलते लोग बेहाल हैं। तन झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण सड़कें और बाजार सुनसान हैं। धूप में काम करने वाले लोगों और अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को भीषण गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। इस बीच लू और तापघात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब राज्य में आवता 4-5 दिन लू रा थपेड़ा लागता रहेला। काल जैसलमेर और बालोतरा माए लू रो ऑरेंज अलर्ट जारी करी चियो है, जबकि 18 जिला सारू येलो अलर्ट जारी करी चियो है। मौसम विभाग रे मुजब ई महीना रा आखिर माए कठे कठे आंधी चालन सागे छाटो छिटको फेवन रा आसार है। इन बीच स्वास्थ्य रा जानकार जनताओं तेज तावड़ा माए नी जावण, पूरो पानी पीवण और बच्चा और बुजुर्गों रो खास ध्यान रखण री राय दीनी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर रा डॉक्टर राकेश नागर आकाशवाणी ने बतायो कि जोरदार गर्मी रे दौरान शरीर माए पानी री पूर्ति रो खास ध्यान रखण चाहिए।
2: गर्मी में धूप में कम से कम निकला जाए, जो भी जरूरी काम है सुबह के समय और शाम के समय संपन्न किए जाएं। इस तरह के मौसम में देखेंगे कि आम का पना, कैरी का पना ORS की तरह से डिहाइड्रेशन का काम करता है। इसके अलावा पुदीने का शरबत, धनिया की चटनी जो काम में लिया जाता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस करता है। तो जैसे गुलाब का शरबत है और खस का शरबत है, इसका नियमित रूप से सेवन हम लोग कर सकते हैं जिससे कि नहीं हो।
0: रेलवे गर्मी री छुट्टियां माए मुसाफिरा रा सुबिता सारू गुजरात रा भावनगर टर्मिनस और दिल्ली री शकूर बस्ती बीच हर सप्ताह खास गाड़ी चलावण रो फैसलो कीनो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि आ गाड़ी 29 मई 27 जून ताई हर सप्ताह चलाई जावेला। आ रेलगाड़ी आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, नीम का थाना, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली कैंट वैती जावेला। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत ऑनलाइन अर्जी देवण सारू पोर्टल काल 15 दिन सारू खोल्यो जावेला। देवस्थान और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत आज पाली माए आ जानकारी टीनी वे बतायो कि योजना रा तहत

0: बुजुर्गान रेल और हवाई जहाज रे जरिए मुफ्त तीर्थ करायो चावेला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इसारो आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। आखिर माय खास समाचार एक फेरु सुन ली रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान री 3 प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवाजा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज टोंक जिला रा बीसलपुर बंधाऊ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो 2 दिन रा बीकानेर दौरा सारू आज पधारण रो कार्यक्रम। हर नौतपा सारू वेवणसा गई प्रदेश में गर्मी रो जोर और बढ़ियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।
2: गांव ग्वाड अर खेत खलियान री बात। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्स। सिंजिया 7 बजिया सुनो ना भूलो आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

लौसा हाजिर है राजस्थानी गीतारो फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत हर सोमवार सिंजिया 7 बजे आप सुन सको हो आपरो पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। कार्यक्रम सुनना सगला हेतालु श्रोताओं ने घणे मान सु गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

0: राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई सादुल शहर सु ओम प्रकाश चौहान मनु प्रकाश शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान गांव कुड़ी सु ठाकुर रूप सिंह कुंवर दिग्विजय सिंह मंजू कंवर सोडा मुमल कंवर और अन्नपूर्णा कंवर अमरखेड़ महाराष्ट्र सो ओ कागज लिखियो है अभिजीत ग्वाणकर सरिता ग्वाणकर सिद्धांत प्रिंस और एकांश ग्वाणकर और ईमेल माने कने आयो है अनारकली बाजार पंजाब सु लिखियो है सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा आशीष बेबी गव्या और जयपाली यादव गांव धुंधाड़ा सु गणेश मेघवाल चंपा मेघवाल मधुबाला विवेक और आना सगड़ा साथी
1: गांव चाड़ी सु उत्तम चंद छाजेड़ राणूलाल छाजेड़ शांतिलाल छाजेड़ कमला देवी छाजेड़ और आनो सगड़ो परिवार
2: गांव केलवाद सोजत सु और कागज लिखियो है सुरेश मेघवाल मंजू निशा और कृष्णा मेघवाल
0: कागज आयो है मलोट कैंप पंजाब सु सतीश मिगलानी सीमा शाइना विशाल मिगलानी सुप्रिया अनमोल धर्मपाल महावीर और रमेश मिगलानी रो
2: आगलो कागज है गांव छापला सु मांगीलाल सीताराम सुरेंद्र कुमार खुशबू और विद्या देवी रो
0: तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना।

राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। और ईमेल आयो है गांव बीकम कोर सू गौतम परिहार, अरविंद परिहार, सोहन परिहार, आरती, दुर्गा, मंजू, संगीता, कुलदीप, हंसपाल और ओम प्रकाश परिहार। आगलो कागद है गांव अरनियाली दोरी मीना बाड़मेर सू लिखन आला है फरसाराम खत्री, भवानी शंकर खत्री, पंकज खत्री, रेखा, निर्मा, किरण, सूरज, शारदा, भाग्यश्री, हार्दिक खत्री और आनो सगड़ो खत्री परिवार। और कागद आयो है फाजिलका सू लिखियो है भूषण, विशाल, शालीन खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार। और ईमेल आयो है गंगा सिंह का खेड़ा भीम सागर सुजानगढ़ सुन लिखियो है मदन सिंह राठौड़ और आना सगड़ा घरवाड़ा। गांव खारा बेरा भीमावता सुमाने कागज लिखे माना नियमित श्रोता है राजू राम सेन, पद्मा सेन और प्रतिज्ञा सेन। और ईमेल माने कन आयो है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर सु लिखण वाला है राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और आना सगड़ा साथी। आगलो ईमेल आयो है भोपालगढ़ सु घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी। आऊ फलोदी सु माने कागज लिखे बिकम चंद टाटिया, संतोष टाटिया, मनोज, सुरेश, खुशबू, सपना, धनी और भूमि। मथानिया सु भगराज वर्मा, बेबी वर्मा, हनुमान, मदन और गोविंद सुथार। बिरे सु रतना राम उदेणिया, मेहराम उदेणिया, गुलाब राम और आनो सगलो परिवार। गांव मेलाना सु छेला राम मेघवाल, रविंद्र, देवेंद्र, अनीता और फूली देवी मेघवाल। और ईमेल आयो है धन्य की ढाणी तहसील सिंहधरी सु गणेश तरड़, चेतन, गिलकी, प्रमोद, पारसी, ममतेश, मोहनलाल तरड़ और विकास तरड़ रो। मलोट कैंप पंजाब सु माने कागज लिखियो है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू जाजो

0: राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई
1: खारिया खुर्द आडेल बाड़मेर सुन कमरा राम सतीश सारण सारो देवी और चंद्रिका
0: रमेश चंद्र चौहान मोहनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी और आना घराला माने ईमेल भेजो है कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सु
2: झालावाड़ सु ओ कागद आयो है लिखण वाला है हर्षिता रामेश्वर काना सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी
1: बदवासिया सु कृष्ण राम सांसी पप्पू राम सांसी कंवर राम सांसी और विनोद सांसी व्यास कॉलोनी एयरफोर्स सु चुन्नी देवी मेघवाल बिंदु मेघवाल कार्तिक हिमांशु विनोद मेघवाल और आणा घराड़ा
0: सारण नगर बाड़मेर सु महराज सारण हीरा सारण हितेश राज नवप्रीत सारण अर आना साथ गांव जेसला तहसील फलोदी सु राजा राम जंवर अर आना साथी फलोदी सु ईमेल भेजियो है सुभाष लेखावत और कागद माने कन आयो है जोधपुर सु लिखियो है रघुवीर किशोर देवेंद्र सिंह जबर सिंह खींची और रतन सिंह खींची
1: और ईमेल आयो है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सु भेजन वाला है दिनेश सोडा रुद्राक्ष सोडा भव्यांश रमनदीप और राम किशोर और कागद आयो है इंदिरा कॉलोनी महा मंदिर सु श्याम डागर राजेंद्र गोपाल मरेठा रमेश सांखला जीतू बाडुलिया नंदू भाई वगलू राम गहलोत और आणा घना सारा साथी पांचला खुर्द सु ईमेल भेजन वाला है दौला राम बेनीवाल गांव कंटालिया सु भीखाराम मौर्या सीता देवी मौर्या विजय प्रकाश गोमती माणकचंद मंजू देवी जयेश और मनीष मौर्या थिंसर नागौर सु कल्याण मल प्रभु राम वंशीलाल हेमा राम शोभा राम मौर्या और आणा सगला साथी
0: तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना

अबार आप सुनियो राजस्थानी लोक गीता रो फरमाइशी कार्यक्रम। अब कार्यक्रम रो भगत हो रियो है पूरो, तो आप रे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दिराओ। राम राम अर नमस्कार।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: ओ नवलोबा,
1: अरे फाटे को डाली मैं आवरा
0: भाई। अरे नवलोबा थे तो है छाया में लुकने बैठा हो, मैं टे तावड़म तो पुआ फाटक खोलो।
1: अरे हम दिन बदी अकार तावड़ो है, मैं आवरा करनी हम दिन बदी बद को।
0: दिन तो अबे बदी
1: बद को तो हम कबड़ कौन है जिको कोई तावड़ो।
0: मैं इतना कोस आयो हूँ तो तावड़ो हो।
1: आ तो है ये भाई, थे मन था निकटू है कौन हो मैं आवरा।
0: अरे नवलोबा आ क्या साथे साथे कई आवाज भी पहचानो भूल गया।
1: अरे कमरी में आवरा हो वसीम भाई।
0: ओख लिया
1: और कौन है जो पानी ने तरसो पानी लूटो पानी बढ़ियो मैं ठंडी मटकी रो पानी पी लो।
0: पी लियो नवलोबा पी लियो थाना बिना कही पी लियो
1: पानी। देखो यू तो बात है भाई, तावड़ो पड़े
0: पड़े सा नवलोबा,
1: तावड़ो पड़े तो अपर जीवी कह कह नहीं भाई पानी पानी करे तो कह भाई पंख पंखे जीव जीना और दाना पानी बात भाई करे।
0: नवलोबा बात आ है कि आपा देखा के भारत में जो है पूर्व विश्व देख लो 18% आबादी अपने भारत में बस है और पूर्व विश्व जो को 4% जो को है वो पानी अपने अटे धरती माते है।
1: उन्हीं में जो समंदर भरियोड़ा,
0: अरे समंदर खारो पानी है नवलोबा, पीऊ काम थोड़ी आवे।
1: नदियां रो मीठो पानी,
0: नदियां रो मीठो पानी आबाद सही है।
1: तो देखो नदी रो पानी मीठो और समंदर रो पानी खारो है। तो कहे नदी घाटी सभ्यता रियोड़ी
0: है सा नवलोबा,
1: चारू मेर खलक मुलक फिर देखो क्या देखो पानी तो ठीक है, धोरा धरती में थोड़ा पानी तकबीर है।
0: अपने राजस्थान में तो नवलोबा देखो शुरू पानी री तकलीफ रही है और आपा जो को है कि पानी रो मोल भी जाना।
1: अरे हूँ तो को सा देखो पानी नी मोटी चीज है
0: सन,
1: जल है तो कल है,
0: बिल्कुल है
1: सन, जल है तो आज है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: मैं तो कह घड़ियो कह नहीं कि मत मत ऊंचा ऊंचा ठेठ के ही तड़ दे रहे हूँ लेना होता
0: आवता सन
1: मेरा बावड़ी लावता कोई पकाल भर लावता कोई करता
0: बिल्कुल लावता सन।
1: तो मोल तो थे मारू बतो तो कहीं है जो
0: जाना को नहीं नवलोबा, लेकिन
1: आजकल हमें घर घर आएगी
0: आएगी से आएगी
1: नल टूटिया आएगी
0: आएगी नवलोबा।
1: देखो पे हमें कह नहीं मोल जड़ना जाने
0: सुबी तो हो गया नवलोबा, लेकिन आ है कि पानी रो मोल तो अपने जानना ही पड़ी। उन्हों जो दुरुपयोग हो रही है नवलोबा, उन्हें रोकने वास्ते कई उपाय अपने करना पड़ी।
1: अरे देखो

0: बड़े मैं आपने बताऊं, आज जो पुण्य तिथि है बलबीर सिंह जी अपने जो को 1924 जालंधर में जन्मे हा और भारत रा जो को प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हा और अपने देखो भी 3 बार ओलंपिक में भारत रो प्रतिनिधित्व करियो हो और 3 बार देखो कि भारत ने स्वर्ण पदक दिलान लाया।
1: ध्यानचंद
0: बिल्कुल हासान
1: बलबीर सिंह और वह कह रही चुटी अंदड़ी है वो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मोटे मैदान में वह कह रही लारे दड़े पर बहुत कह रही के एकदम ठोका जी ने कटीरी कटी जा
0: जावे सानो
1: हाँ तो कह रही बलबीर सिंह जी हाँ जो बलशाली हाँ
0: हाँ सानो
1: लोग और 3 बार कह रही भाई है जी को देश रो ना ऊंचो करियो तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदिरेरा फूल चढ़ाऊ बड़े
0: बड़े मैं आपने बताऊं आज जो को पुण्य तिथि है भगवत रावत जी री अपने टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में जन्मे हाँ और अपने जो को भारत रा एक प्रगतिशील कवि और निबंध लेखक हा
1: ठीक ठीक
0: हाथ हाथ है जो को वसुधा पत्रिका ही वाणा संपादक भी हा और साहित्य योगदान वास्ते जो को अपने काम करियो तो घनी पुरस्कार भी मिले हा और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी परिषद का अध्यक्ष भी रहे
1: बात है मालवे प्रदेश रहा है अलिकाराई हाल कहनी के कवि हाल है बताई तो आप कामड़ा चौका कर गया तो मैंने कहा भूले को नहीं कोटी कोटी नमन है
0: ऐसा ना
1: और मन रहना भूल सदा हूँ बड़े
0: बड़े आज पुण्यतिथि है आशुतोष मुखर्जी जी है जो को अपने बंगाल रा ख्याति जो को प्रसिद्धि प्राप्त बैरिस्टर शिक्षाविद हा नवलोबा और 1906-14 तक बंगाल विश्वविद्यालय रा उपकुलपति भी रहा
1: ठीक ठीक कुल गुरु आओ
0: और याने आधुनिक जो को बंगाल रो निर्माता भी कहे है
1: कैसा देखो भला मिन कर हाथों भला काम हुआ गुणी विद्वान हाँ तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है और मंदिरेरा फूल सदा हूँ बड़े
0: बड़े आज जो को पुण्यतिथि है रजनीकांत अरोल जीरी है जो को अपने अहमदनगर महाराष्ट्र तालुक राखता नवलोबा और भारत रा जो को प्रसिद्ध समाज सेवी हा है हाँ घनी समाज सेवा करी और याने रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिलियो हो नवलोबा पद्म भूषण भी भारत सरकार सम्मानित करियो और मदर टेरेसरा स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार भी सम्मानित
1: होया गुणी विद्वान हा सेवा परोपकारी आदमी हा तो आने जो कोई नहीं भूल सके आने कोटि कोटि नमन है मंदिरेरा फूल चढ़ाओ बड़े
0: बड़े मैं आपने बताऊं आज जो को एक हिंदी सिनेमा री एक और जो को हस्ती ही सुनील दत्त जी वाणी आज जो को पुण्यतिथि है
1: ओहो सुनील दत्त जी तुम मिलियो रो भाई
0: मिलियो रहा
1: हाँ ये तो भाई देखो क्या भूखिया ज्यादा ज्यादा हा और कई फूट रहा है जो को कह नहीं मिन खा अरे कह नहीं मनु नहीं।

0: विद्या वनी बड़ा परोपकारी है।
1: परोपकारी हाँ नवलोबा जो को फिल्मा में यानो नाम सुनील दत्त हो लेकिन असल नाम यानो जो को बलराज रघुनाथ दत्त हो और जो को भारतीय हिंदी सिनेमा रा जो को जाना माना जो को अभिनेता है और आप अभिनय चार दशक तक लोगों ने
0: अरे घड़ा रहा है तो कह दियो नी के भाई बिरला मिन्नता
1: हाँ सा नवलोबा
0: और ये है जो मदर इंडिया हुई नी फिल्म
1: वो
0: मैं बेपज कहीं कह एक अरी सवारी करी कामल दे बरार
1: बाबा तो मने ही याद है
0: समझा नी वो गीत लो नी ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान
1: हूँ हाची गीत गाया
0: दुनिया जो सब है वो
1: मैं इंसान
0: वाह होना हो मने और मत फेरियुड़ो नी
1: कैमरो
0: फेरियुड़ो
1: बिल्कुल बिल्कुल नौलोबा होनो होनो

0: नेता हा,
1: बिल्कुल हसन वाला।
0: और है जो सुभाष चंद्र जी बोस रे कलुम्बे में हा, और मोटा मोटा क्या नहीं तब क्या मोटा वकील हा जी कई क्या नहीं है देश रे वास्ते आप रो है क्या के नोचावर करियो
1: करियो ना बोलो
0: और अत्याचार ने जुलम सहन करना आज अपन आजाद कराया
1: कराया ना बोलो
0: तो कम बात को है नहीं आने क्या नहीं पर बातें पोर धोख देवा कोटी कोटी नमन करा मंदिरा फूल चढ़ावा बड़े
1: बड़े। मैं आपने बताऊं आज को जन्म जयंती है नवाब मिर्जा खान दाग दहलवी जी ए जुको अपने नवलोबा उर्दू रा जाना माना और प्रसिद्ध शायर होया और गजल में जुको जबान और भाषा ने जुको नए रूप दियो है वो मोटो काम करियो उर्दू जबान में।
0: हाँ हर सी बात है देखो उर्दू जबान ही है जुको अपन क्या नहीं घुड़ी मिली उड़ी
1: है नवलोबा है
0: और है बोली भाषा में भाई है जुको सिरे है
1: ऐसा
0: और जुको कह नहीं के शायर होया तो बे तो कह नहीं के अजर अमर है तो चौकी बात है के दिल्ली रहता।
1: हाँ रहता सर
0: है जुको दाग दाग कहता
1: बिल्कुल दा उस्ताद दाग दहल भी क्या होता है। हाँ। मिर्जा गालिब भी यानी जबानों और भाषाओं बड़ा प्रभावित
0: है। हाँ भाई देखो गुणी गुणी मिले जो है बात
1: मोटी हुआ सर
0: तो,
1: सही है।
0: और कोई है जिसको लिखी उड़ो कोई कह नहीं की कोई रचना हुए तो मने ही होना दो
1: हुना ना लबा हुना।

0: वैसा मगर बैठी बात
1: बैठी
0: हाँ बैठी
1: देखो सा शायरी है कवि होया है ए जो को दुनिया में तजुर्बो करे और जो आके देखे उन्हें जा अपनी शायरी कविता।

0: अच्छी बात है। दूसरी बात देखो साके दिखो क्या नहीं के दुनिया बीती है बात है जो की लिखन देवे करे जो है बात
1: भली है साना मतलब
0: हाँ हमें भले कोई है कहीं क्या नहीं है तो बस देखो आज है जो गंगा दर्शन
1: है साना मतलब
0: तो गंगा दर्शन मेरा क्या नहीं भाई गंगा मैया में पानी बहे है और बह नहीं तो क्या नहीं की भाई गंगा मैया न जाति देखे न धर्म देखे गरीब देखे न अमीर देखे
1: नहीं देखे
0: देखो जाके तो माँ है तो भली आप क्या नहीं आप तिरस मिटाओ आप रहे जो क्या नहीं धर्म कर्म करो
1: करे सर
0: आप रहे खेती पाती करो और चाहे भली पानी उठे गंगा मैया है जो क्या नहीं की क्या उसमें क्या हो मानो तो गंगा मैया ना मानो तो बहता पानी
1: ऊपर वाला तो जो को निजाम है नवलोबा के वो कि नहीं साथ भेदभाव को नहीं करे
0: करे।

0: जो को निजाम है नवलोबा के वो कि नहीं साथ है भेदभाव को नहीं करे है
1: आ करे ने मत को एकट राखे नहीं हो
0: एकट राखे
1: है आज आप देश री कह नहीं कह नो मोटी आ के
0: मिसाल है सा
1: ठीक है नहीं
0: बिल्कुल है सा
1: अगर कोई है जो को कह नहीं कह कोई अर्जी सी गीत सुनाओ कनी आज
0: हुनो हुनो नवलोबा।

यह कार्यक्रम सीमा डेयरी गूंज। मीडियो वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं दौड़ फिल्म से। गीतकार है महबूब, संगीतकार है AR रहमान और इस गीत को गाया है आशा भोसले और यशुदास ने।

श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत आपको सुनवाते हैं परदेश फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार है नदीम श्रवण और इस गीत को गाया है कुमार सानू ने।

बाबुल सुप्रियो, अलका याग्निक और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म सात रंग के सपने से। इस गीत में गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत। ये गीत हमने लिया है डुप्लीकेट फिल्म से। गीतकार है जावेद अख्तर।

श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं जिद्दी फिल्म का ये गीत। बोल समीर के हैं, संगीत दिलीप सेन और समीर सेन का है। इस गीत को गाया है हरिहरन और के एस चित्रा ने।

श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं दुश्मन फिल्म का ये गीत। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।

समीर का लिखा ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म कुर्बान से। संगीत आनंद मिलिंद का और इस गीत को गाया अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर

0: कि सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेन्द्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: पद्म विभूषण
3: डॉ श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
5: High international crude prices and
6: a
5: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
6: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन

0: एक्सचेंज।
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
3: Several key agreements were signed.
4: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
5: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
6: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
7: लाइक मैट्रिक टन्स ऑफ इम्पोर्ट्स हैव रीच्ड आवर शोर्स।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzone

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्वभर अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है, जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमरीका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9.

श्रोताओं, इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मैंने प्यार किया फिल्म से। बोल असद भोपाली की है, संगीत राम लक्ष्मण का है और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं प्यार मोहब्बत फिल्म का ये गीत बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर खान ने।

आई श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं राम लक्ष्मण फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है मानर रोधास और अनुराधा पौडवाल ने, बोल आनंद बख्शी के संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं वारिस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने, बोल लिखे हैं वर्मा मलिक ने और संगीत है उत्तम जगदीश का।

श्रोताओं, वारिस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अगला कार्यक्रम खेल जगत आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के इस अंक में सबसे पहले आप सुनेंगे सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत, और इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे गोल्फ खिलाड़ी शिक्षा जैन से डॉक्टर गौरव यादव की बातचीत। तो पहले सुनिए सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का अंशदान है।
1: खेल जगत के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, खेल जगत के इस अंक में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वर्तमान में श्रीमती विजय राजे सिंधिया खेल संकुल झालावाड़ में स्थानीय खिलाड़ियों को सॉफ्ट बॉल के गुर सिखाने वाले सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से। विशाल चौधरी के बारे में आपको बता दें मित्रों कि खेलो इंडिया से लेकर कई बार आप नेशनल सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और झालावाड़ जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। साथ ही बेसबॉल में भी आप नेशनल खेले हैं और इसी साल यानी 2026 में भी विशाल ने उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित वेस्ट जोन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 में पार्टिसिपेट किया और अपने खेल कौशल से सभी को प्रभावित किया है। विशाल नमस्कार, खेल जगत में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार सर।
1: विशाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सॉफ्ट बॉल की दुनिया में आपका सफर कैसे शुरू हुआ?
2: सर, मेरा सॉफ्ट बॉल की दुनिया में सफर जब मैं 6th क्लास पढ़ता था तब से शुरू हुआ। जो मेरे सीनियर थे वो इस गेम को बहुत ही आकर्षक रूप से खेल, तो मेरा भी उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा और फिर उनके साथ खेलने लगा तो मेरे को अच्छा लगा। एक्चुअली में क्या है, अलग से गेम लगता था, अलग से खेलना, उसे बैट गोल वाला स्लाइगर बड़ा सा बॉल, तो एक अलग सा मजा आता कि इतने इस बॉल को पकड़ने के बाद बहुत मजे आएंगे।
1: आज के जमाने में क्रिकेट का बोलबाला है
2: जी,
1: और लगभग हर युवक चाहता है कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बने, ऑलराउंडर बैट्समैन बने।
2: सर, मेरा भी एक क्रिकेट का एक्चुअली में था, हम भी क्रिकेट बहुत खेलते थे, बट जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखते हैं, लोगों को देखते हैं क्रिकेट में डिमोटिवेट होते हुए, कुछ ही लोग सक्सेस हो पाए हैं, बट मेरे को अलग से अच्छी फीलिंग आई उसको खेलने के बाद कि नहीं, फिर मेरे को लगा कि नहीं ये भी अच्छा है, तो फिर जब से हम इससे जुड़े हुए हैं। सर,
1: किसी भी युवा को, किसी भी खिलाड़ी को अपने करियर में आगे बढ़ाने के लिए उसके परिवार की, उसके दोस्तों के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है।
2: जी जी जी।
1: तो आपको ये सपोर्ट कैसा मिला?
2: एक्चुअली मेरे पापा को भी शुरू से यही शौक था, हमारे गांव में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल जो गेम चलता, मेरे पिताजी भी इसे गेम से जुड़े। पापा को एक्चुअली उनको पता था कि गेम खेलेगा ना कोई ना कुछ करेगा, और मेरे दोस्त भी, मेरे साथ जितने भी साथी रहे मेरे, जो भी इसी गेम से जुड़े हुए थे, तो मेरे को अच्छा लगता था। सर,
1: पहली बार सॉफ्ट बॉल मैच आपने कहां और कैसे खेला और किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आप नेशनल तक पहुंचे और आज आप सॉफ्ट बॉल के सफल प्रशिक्षक हैं, इस दौरान आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या अचीवमेंट आपने हासिल किए?
2: सर, मैं पहली बार 2013 में डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी, तो उसमें मैं, हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया था, हमने तो वहां पर हमारी टीम विनर रही थी। उसके बाद मेरा स्टेट में चयन हुआ था, जो मैं पहली बार बीकानेर खेलने गया था। जब वहां गया तो सभी जिलों की टीमें आई और वहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन, कुछ हमारे यहाँ स्लो पिच थे, वहां देखा गया तो कि बॉल स्विंग हो रही है, इधर जा रही है, और अलग सा लेवल देखने को मिला, तो दौड़ी कुछ भी हुई, तो पहला मेरा टूर्नामेंट था। उसके बाद फिर मैं सब जूनियर नेशनल खेला जो झालावाड़ में एमेच्योर द्वारा आयोजित हुआ था, तो उसमें भी झालावाड़ विनर हुआ था। फिर उसके बाद आगे जैसे मैं गया तो 2019 में मैंने नागपुर सीनियर नेशनल पहली बार पार्टिसिपेट किया, जब मेरी एज लगभग सर 19 वर्ष थी, उस टाइम मैंने सीनियर खेला। फिर मैंने उस ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम चले थे, तो मेरा, मेरे बीए में एडमिशन हुआ झालावाड़ कॉलेज में, तो पहली बार किशनगंज कॉलेज द्वारा एक आयोजित हुआ था सॉफ्ट बॉल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता है, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ से हमने भाग लिया, उसमें हमारी टीम विनर रही। फिर यहाँ से सिलेक्शन हुआ हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए, तो पहली बार दफा ऐसा हुआ था कि कोटा यूनिवर्सिटी की टीम पहली बार टॉप 8 में गई थी, इसमें झालावाड़ के 5 खिलाड़ी खेल रहे थे और मैं उसमें पिचर की भूमिका मैंने निभाई थी। तो सर, मेरे को बहुत उसी से ही थोड़ा मोटिवेशन मिला, जब हमारा केरला से मैच था तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब फिर उसके बाद हमारा 2020-22 में जो पाली में वेस्ट जोन टूर्नामेंट हुआ उसमें हमारे विनर हुए हम। उसके बाद फिर सर 23 में फिर विनर हुआ, और फिर अभी जो 2026 में वेस्ट जोन उज्जैन में आयोजित हुआ था, तो उसमें राजस्थान की 4th प्लेस लगी है। सर, फिर सर जैसे बढ़ता गया तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया, तो मजे भी आ रहे हैं सर अब।
1: जी जी जी। देखिए, बहुत अच्छे अचीवमेंट आपके हाथ लगे हैं और इतनी उम्मीद किसी से नहीं की जाती कि इतनी बार कोई नेशनल खेल ले।

0: आपने कई बार ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा विशाल, सॉफ्ट बॉल के अलावा आप और कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं?
1: सर, सॉफ्ट बॉल के अलावा पहले तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था, पर एक्चुअली में सॉफ्ट बॉल का एक मिला जुला गेम है बेसबॉल।
0: जी जी जी।
1: तो उसको लोग बोलते हैं, इसे पहले बोला जाता था कि मर्दों का गेम है, मर्दों का गेम है। पहले एक्चुअली में क्या है, बेस सॉफ्ट बॉल को लड़कियां खेलती थी और बेसबॉल को लड़के खेलते थे अमेरिका में। तो फिर उसके बाद दोनों को मिक्स कर दिया, तो फिर उसके बाद हम बेसबॉल खेला। तो बेसबॉल में नेशनल खेलने गया, पहली बार विशाखापट्टनम में नेशनल गया। उसके बाद हम भिलाई में गए और फिर अभी लेटेस्ट में पंजाब में हुआ था, तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसको सेम गेम है, बस उस बॉल का फर्क है और मेजरमेंट का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है सर।
0: विशाल, आप बहुत लकी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों खेलों में आपने क्या अंतर देखे और क्या समानताएं देखी, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे।
1: समानताएं तो इसमें सब बहुत सी है। एक्चुअली में क्या है, ग्राउंड सेम डायमंड, प्लेयर नाइन खेलते हैं, इक्विपमेंट सेम यूज होते हैं, बैट और बॉल का अलग अलग होता है सर। एक्चुअली में क्या होता है, सॉफ्ट बॉल का ग्राउंड 270 फीट की होमर रन होता है, उसमें 350 फीट होता है, जिसे सॉफ्ट बॉल में थोड़ा बड़ा बॉल होता है, उसमें थोड़ा छोटा क्रिकेट की साइज का बॉल होता है। दूसरा, इसमें पिचिंग, उसमें थ्रोइंग पिचिंग की जाती है, इसमें अंडर आर्म पिचिंग की जाती है। दूसरा, एक बैट का जो साइज होता है वो जो लगभग 34 का होता है, तो उसमें 34 तो होता है, बट उसका जो बैरल होता है उसकी लंबाई थोड़ी बड़ी होती है सर। और सब कुछ सेम है सर, तो मजे आए कॉमन गेम। तो थोड़ा हल्का सा जो ग्राउंड 60 फीट का जो होम लाइन होती है उसमें 90 फीट की होती है सर।
0: जी, जी।
1: बाकी दोनों गेम अच्छे हैं सर, दोनों सेम है, बस बॉल का फर्क है सर।
0: जी विशाल, और विशाल, किसी भी गेम में प्लेयर के लिए नेशनल खेलना एक सपना होता है, और आपने दो गेम में नेशनल खेला है, तो नेशनल और इंटरनेशनल के बीच आपका क्या फर्क रह गया, आपने इंटरनेशनल से कैसे दूर रह गए?
1: सर, एक्चुअली में सॉफ्ट बॉल अभी इंडिया में डेवलप गेम है, डेवलप हो रहा है। इसका इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की रैंकिंग 58 पे है। कैंप लगा था उज्जैन में तो हम गए थे, पर उसमें जाना टीम कैंसिल हो गई, तो उसमें हम नहीं जा पाए।
0: तो अब विशाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दो दो गेम में नेशनल खेले हैं, उसके बाद भी आपने कोच बनने की राह क्यों चुनी?
1: सर, अभी जो अपने इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी खेलो इंडिया,
0: जी जी जी,
1: तो उसमें जो बच्चा किसी जिले से अपने पर्टिकुलर गेम में 2-3 नेशनल खेला हुआ है,
0: जी जी,
1: तो उनके लिए 5 चैंपियन एथलेटिक के थ्रू एक खेलो इंडिया का एक सेंटर हर जिले में डेवलप किया गया था, जिस उसके जिले के डिमांड को देखते हुए, उसके तहत आप लोगों को गेम मिला था शॉर्ट बॉल। तो उसमें पार्ट टाइम एथलेटिक के लिए कोच की वैकेंसी आई थी, तो उसमें मेरा उसमें चयन हुआ। फिर उसके बाद मेरे को भारत सरकार द्वारा एनआईएस कराई गई, तो जैसे मैं एनआईएस करने गया तो फिर को वहां पे लगा कि कोच एक्चुअली होता क्या है।
0: जी जी जी।
1: मेरा सपना था कि मैं नई पीटीआई बन के किसी गवर्नमेंट स्कूल में से करेंगे, बट वहां जाने के बाद पता चला कि नहीं यार, पर्टिकुलर अपने गेम का एक कोच और पीटीआई मतलब कि सभी उसको गेम कराने पड़ेंगे, असली फीलिंग तो अपने गेम को खिलाने में बच्चों से। तो फिर मेरे को लगा हुआ कि नहीं, अब तो बनना तो कोच ही है, तो उसकी सर मेहनत करते रहे और अभी पार्ट टाइम लगे हुए हैं, देखो भविष्य में फिर अगर वैकेंसी आती है तो।
0: और इस समय जूनियर, सब जूनियर और सीनियर और लड़के और लड़कियां, यानी सभी प्रकार के खिलाड़ियों को आप सॉफ्ट बॉल के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो क्या रेस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है?
1: सर, बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी 2025-26 के मैचोमेंट बताते हैं आपको, तो हमारे लगभग 9 बॉयज और 3 लड़कियां
0: जी जी
1: अभी ओल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेल के आई है, जो अपने वहां कर्नाटक में आयोजित हुई थी सर। और छोटे बच्चे भी, हमारा एक मयंक नागर है लड़का, तो वो नेशनल खेल के आया है। झालावाड़ में पहला एक गेम है जो गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे लेके आ रहा है, तो लोगों का क्रेज बढ़ रहा है। अभी जैसे गर्मियां बड़ी, छुट्टियां लगी, तो बच्चे आ रहे हैं।
0: और कौन सा फेडरेशन या संस्था सॉफ्ट बॉल की खेल गतिविधियां आयोजित कराती है?
1: भारतीय सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन द्वारा इसको बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है।
0: जी जी।
1: और इसके समय समय पर सीनियर, जूनियर, सब जूनियर प्रतियोगिताएं का आयोजन करवाते हैं हर साल। और सबसे अच्छी बात यह है कि झालावाड़ के बच्चे इसमें अधिकतर बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जब भी लगभग मैं जब से मैं खेल रहा हूँ, हर एक ऐसा कोई सा टूर्नामेंट नेशनल नहीं गया जिसमें झालावाड़ का बच्चा राजस्थान टीम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, चाहे वो सब जूनियर हो या सीनियर हो।
0: झालावाड़ के लिए वास्तव में ये गौरव की बात है कि नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं और सॉफ्ट बॉल में अपना नाम रोशन कर रहे हैं।
1: जी।
0: प्रैक्टिस कितनी जरूरी है और पूरा रूटीन प्रैक्टिस का किस प्रकार से होना चाहिए?
1: सर, किसी भी गेम के लिए सर वो बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट, तो किसी भी गेम को खेलने से प्रैक्टिस बहुत जरूरी। तो हमारा रूटीन होता है, सुबह हम हमारे बच्चों को सुबह 6:30 बजे ग्राउंड बुला लेते हैं, तब स्कोप द स्कूल, तो उसमें हमारे बच्चे आते हैं, तो हम पहले उसको रनिंग, फिर एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइज विद नॉर्मल गेम स्किल्स जो उसका डेवलपमेंट करवाते हैं। उसके बाद जैसे गेम क्लोजिंग सेशन होता है, तो उनको थोड़ा वार्म अप रनिंग करा के, वार्म अप करवा के और कूल डाउन करके उनको छोड़ देते हैं। अभी एक खेलो इंडिया की एक पॉलिसी के तहत संडे साइकिलिंग जो चल रहा है, उसमें भी हमारे बच्चे पार्ट ले रहे हैं, अच्छा रिव्यू आ रहा है, राजस्थान में हमारा फर्स्ट पे चल रहे हैं इसमें।
0: जी जी जी। और एक सॉफ्ट बॉल प्लेयर के लिए पिचिंग, हिटिंग, फील्डिंग बहुत महत्व रखती है, तो पिचिंग, हिटिंग, फील्डिंग में सुधार के लिए आप किस प्रकार की प्रैक्टिस खुद करते हैं और करवाते हैं अपने खिलाड़ियों को, और कौन कौन सी खास एक्सरसाइज?
1: इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अपने मसल्स।
0: जी जी।
1: मसल्स के लिए हम बच्चों को वेट ट्रेनिंग करवाते हैं, साथ साथ रिस्ट रोटेशन करवाते हैं। तो हमारे पास

0: अभी इसमें योजना के तहत ही हमारे पास बच्चों के लिए जिम के इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हुए हैं, तो उससे हम बच्चों को थोड़ा एक्टिविटी करवाते हैं। साथ साथ अभी जो मैं एनआईएस करने गया था तो वहां पे थोड़ा सा साइंस का भी उसमें यूज सिखाया था, तो उसको
1: जी जी
0: हम
1: जी
0: बच्चों पे अभी धीरे धीरे जनरेट कर रहे हैं, जैसे किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स का उसमें यूज करके बच्चों के कार्डियो सिस्टम्स की कुछ मसल्स का जो भी इशू है उसको दूर करके, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हो जाए। और
1: जी जी
0: सबसे
1: जी
0: इम्पोर्टेंट पार्ट इसी में वही है जो सर अभी आपने बताया मुझे कि पिचिंग, कैचिंग, बैटिंग, तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि अगर
1: जी
0: आपकी
1: जी
0: पिचिंग अच्छी है तो आपका पिचर ही पूरा गेम जीता लेगा।
1: जी
0: तो पिचर की अलग से स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, इसके थाइस भी मजबूत होने चाहिए, पिचर यानी कि फुल ऑन फिट एंड स्पीड मैन प्लेयर।
1: जी जी जी सॉफ्ट बॉल में अंडर आर्म फास्ट पिचिंग भारत में ऐसा माना जा रहा है कि अभी अभी नई नई आई है, तो
0: जी
1: कोच की हैसियत से आप प्लेयर्स को फास्ट पिचिंग की बुनियादी टेक्निक कैसे सिखाते हैं और कितने समय में वो इस प्रक्रिया से मास्टर बन सकते हैं?
0: एक्चुअली मैं खुद भी इसी गेम में पिचर रहा हूँ। नहीं एक्चुअली में नहीं, तो क्या अंडर आर्म पिचिंग तो होती थी, बट वो क्या है जंप से नहीं होती थी, खड़े
1: जी
0: खड़े
1: हाँ जी
0: पिचिंग
1: हाँ
0: करना होता था।
1: जी
0: तो अभी इंडिया में से नई आई जंप करके, ऐसे पैर लेग पैर पीछे आगे प्लेट पे दोनों पैर रखने पड़ते हैं, पीछे रखे तो जंप करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका लैंड कैसे हो रहा है, सीधा सा आपकी जब बॉल डालने से पहले आपका लैंडिंग अगर सही है तो पिच अपने आप सही जाएगी। उनको बताते हैं, बेसिक
1: जी
0: से
1: जी जी
0: हमें सिखाया गया कि आपको जैसे पॉकेट, जैसे लोअर पहनते हैं उसमें पॉकेट के पास से बॉल चुन तो अच्छा जाएगा, आपकी फिंगरिंग कैसी होती है, ग्रिप्स वगैरह जो उसमें ग्रिप बनी सीम बनी होती है तो उस ग्रीस
1: जी जी
0: पकड़ के।
1: और विशाल, हार या जीत खेल का हिस्सा होता है, और इस अंतर को आप किस प्रकार से देखते हैं और हार के बाद प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं?
0: सर हार जीत एक बहुत बड़ा इमोशनल पार्ट्स है। ऐसे लोग तो जैसे देखा जाए इसमें दो तरीके, स्पोर्ट्स जो प्लेयर होता है उसको दो चीजें से जुड़ा हुआ होता है, एक तो खुशी के आंसू, एक गम के आंसू। जैसे हारते हैं तो मैं बच्चों को बहुत सारी चीजें ऐसे कहता हूँ, कोई बात नहीं है, अच्छा अगले साल कुछ अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं हमें कमी रही होगी। मैं उनसे ये तक बोलता हूँ कि वो बच्चे से कि कहीं ना कहीं उनमें नहीं है, मेरे में कुछ मैंने तुम्हें कम सिखाया, बाकी ठीक ये जैसा चल रहा है। और जीतने के बाद तो फिर आप को
1: जी
0: सबको
1: जी
0: पता है
1: जी
0: कैसा क्या होता है।
1: और खेल के दौरान फोकस बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं?
0: हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि बच्चों का जैसे ग्राउंड में बाहर से होटिंग वगैरह होती है तो बच्चे का कैसे उसमें फोकस रहे, इसलिए मैं उनको एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स अभी जो योगा के द्वारा मिलता है लोगों को, तो मैं लगभग इनको बेसिकली इसी चीजों से रिलेटेड करके जिसको जुड़वाता हूँ, तो मैं इसमें इनको मेडिटेशन करवाता हूँ। दूसरा इनका फोकस ग्राउंड में रहे, तो इसलिए उनके जो उसके कमांड्स होते हैं गेम्स के रूल, जो अपन आउटिंग वगैरह करते हैं तो प्लेयर में से बोलते हैं कि थ्रो इन फर्स्ट बेस, तो उसका एक्टिवेशन आता है। और गेम
1: जी
0: ऐसा
1: जी जी
0: गेम है ये, तो स्लो के साथ साथ फास्ट भी चलता है। क्रिकेट में क्या होता है कि अभी बॉल पहुंचा नहीं पहुंचा, इसमें पर्टिकुलर जो 9 प्लेयर 9 प्लेयर्स इन होते हैं तो कभी भी किसी के पास बोलते हो एक्टिवेशन होती है। और दूसरा हम फोकस के लिए बहुत सारी ड्रिल्स करवाते हैं इनसे, बॉल्स जैसे बॉल पर्टिकुलर बॉल थ्रोइंग करवाते हैं, ऐसे 100 150 बॉल से लग कंटिन्यू हिटिंग करवाते हैं, तो इनका फोकस बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं।
1: अच्छा विशाल, आपने सॉफ्ट बॉल में कई बार नेशनल खेला है,
0: जी
1: तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके करियर का सबसे यादगार मैच कौन था और उससे आपको क्या सीख मिली, क्या अनुभव आपका रहे?
0: सर मेरे करियर में सर सबसे सबसे पहला तो मेरे जो फर्स्ट में खेला, तो मैं हम फर्स्ट में विनर हुए तो एक अलग से कि नहीं यार अच्छा लगा भी जीतने के बाद, बट एक हमारा मैच था 2017 में, हमने भरतपुर के खिलाफ खेला था स्टेट मैच, ओपन स्टेट, तो वो सबसे यादगार मैच था हमारे लिए। हमारा बहुत अच्छा मैच चला था, उस मैच में लास्ट इनिंग में हम थोड़ा 4 5 से हम उसमें बिछड़ गए थे, हार गए थे, तो
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: उसके
1: जी
0: बाद मेरे को मोटिवेशन मिला। हमारे सभी दोनों कोच जो मेरे को सपोर्ट करते हैं आज, उन्होंने मेरे को समझाया, मैं समझाया, थोड़ा सा ऐसा इमोशनली हो गए थे उस टाइम,
1: जी
0: इतना
1: जी जी
0: खेलने इतना टाइम था, लंबा मैच चला फिर हम हारे, तो उस दिन से मेरे को सीख मिली कि नहीं अब अच्छा मेहनत करना चाहिए, साथ साथ आपको क्या क्या हमें कमियां रह गई तो उस पर मेहनत करिए, तो वहां से थोड़ा मोटिवेशन मिला। और मेरे जीवन का सबसे यादगार मैच देखा जाए तो वही था, कि इतनी भीड़, इतनी गैदरिंग,
1: जी जी
0: झालावाड़ और
1: जी
0: भरतपुर के मैच को देखने की इतनी पब्लिक थी, ऐसे बिल्कुल से तनातनी और अच्छा माहौल में अच्छा मैच चल रहा था, मजे आए।
1: जी जी जी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल हम देखें तो हम देखते हैं कि विदेशी टीमों के आगे हमारी भारतीय टीम थोड़ी कमजोर नजर आती है, तो क्या ऐसी वजह है जिनकी वजह से हमारा प्रदर्शन कमजोर सा रहता है?
0: मेरे मेजर जनरल जानकारी इस हिसाब से बता रहा हूँ कि बच्चे क्या है, हमारा इंडिया की जो टीम जो जाती है एक्चुअली में क्या है, पर्टिकुलर उसी बेसिस पे उसी गेम्स के जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, पर वो जो टीम जो जाती है उसमें एक्चुअली में, पर जो सामने जो टीमें जो आती है इंटरनेशनल लेवल पे जो आती है उनका ऑलरेडी उनकी अच्छा डेवलपमेंट होता है,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: लंबी प्रोसेस से आते हैं अच्छे इक्विपमेंट्स, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू है कि गेम अभी अच्छे से अपनी कंट्री में डेवलप नहीं पाया, जब डेवलप हो जाएगा तो फिर कौन जापान कौन सब इंडिया सबसे बेस्ट होगा।
1: और फिलहाल हमारे देश में हम देखते हैं कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेल बहुत पॉपुलर हैं,
0: जी
1: और इन सब के बीच में आप सॉफ्ट बॉल को कहां पाते हैं और हमारे देश में आप इसका क्या भविष्य देखते हैं?
0: सर, इसका भविष्य तो बहुत अच्छा है एक्चुअली में, गेम बहुत अच्छा है। दूसरा आप देखो तो मैं तो मेरे जनरल मेरे गेम को मुझे अच्छा प्यार है, तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, बट नहीं कहीं ना कहीं सॉफ्ट बॉल का बहुत अच्छा भविष्य है, किस किस हर चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, साथ साथ मेंटली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा,

0: कि कब बॉल आ रहा है, किसको कहाँ थ्रो करना है। अब ऐसा नहीं क्रिकेट एक रन लेके तो दौड़ लिया डक, ऐसा नहीं है। 24 घंटे हर प्लेयर को एक्टिव, जब गेम खेलेगा तो उसको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रही है, किस बेस पे थ्रो
1: जी
0: करना है।
1: जी जी
0: थोड़ा नियम थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा रूल्स तो वो भी है और ठीक है, अपना गेम है। और अच्छा खुशी मिलती है लोगों को हर दिन, जो नो प्लेयर खेलते हैं हर टाइम गेम के टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, कब किसके पास बॉल आ रही है, अच्छे से
1: जी
0: बॉल
1: जी
0: पहुंच
1: जी
0: पा रही है।
1: विशाल, आप सॉफ्टबॉल और बेसबॉल के नेशनल प्लेयर हैं, साथ ही कोच के रूप में सॉफ्टबॉल के प्लेयर भी इस वक्त तैयार कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप अपने खुद के खेल जीवन को कहां तक देखते हैं, आगे आपका क्या लक्ष्य है?
0: सर मेरा लक्ष्य तो अभी गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं कोच बनता हूं तो मेरे को कुछ इससे बड़ा कुछ तो क्या होगा। आने वाला मेरा यही भविष्य है कि मैं जितना हो सके मेरी तरफ से प्रयास करूं कि झालावाड़ से अच्छे प्लेयरों को निकाले, हम साथ साथ राजस्थान की भी टीमें अच्छी जाए, हम उसके लिए पूरे दिल और जान से मेहनत करेंगे। साथ साथ मेरे जो कोच हैं वो भी मुझे आज भी सपोर्ट करते हैं, जैसे बात करूं मैं मेरे कोच ललित सर हैं, कृपा शंकर सर जो खेल अधिकारी, उनका मेरे सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे
1: जी
0: पे,
1: जी जी
0: साथ साथ विनोद सर है हमारे, तो ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरे साथ बहुत प्रयास करते हैं लोग, मेरे से ज्यादा कहीं ना कहीं ये लोगों ने मेरे को आज जो भी हूं मैं इनकी बदौलत हूं तो ये लोग चाहते हैं। तो साथ साथ ये भी आज इस तरीके से भी इनके व्यक्तिगत जीवन से भी आज जुड़े हुए हैं इतने सफर के बाद, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ के मैं भी कुछ अच्छा करूं, और अगर गवर्नमेंट कोच लगते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसके साथ हम गेम का वो डेवलप कर पाएंगे।
1: विशाल, आप अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब हों, सॉफ्टबॉल के कुछ ऐसे खिलाड़ी तैयार कर पाएं जो कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर भी देश का गौरव बढ़ाएं और झालावाड़ का मान बढ़ाएं। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सॉफ्टबॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का अंशदान था। लीजिए अब सुनिए गोल्फ खिलाड़ी शिक्षा जैन से डॉक्टर गौरव यादव की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात गोल्फ प्लेयर शिक्षा जैन से करवा रहे हैं, आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में।
4: शिक्षा, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
5: थैंक यू।
4: शिक्षा, आप अपने बारे में बताइए।
5: मैं जयपुर से हूँ और मैं एक नेशनल और इंटरनेशनल गोल्फर हूँ, और मेरी मम्मी का नाम मेघा जैन है और मेरे पापा का नाम सनी जैन है।
4: आप गोल्फ खेलती हैं, आपके टी शर्ट के ऊपर जो इंडिया का फ्लैग है वो भी मुझे नजर आ रहा है, निश्चित रूप से आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप जैसे बच्चे जब आगे आकर खेलते हैं तो बहुत सारे बच्चों को और प्रेरणा मिलती है। शिक्षा, आप बताइए कि गोल्फ की शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई?
5: जब मैं अराउंड 8 ईयर्स की थी तो मेरे पापा के एक फ्रेंड ने हमें बोला था कि हमें एक बार गोल्फ ट्राई करना चाहिए। उससे पहले मैं बैडमिंटन खेलती थी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम गोल्फ ट्राई किया मुझे धीरे धीरे गोल्फ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मैंने इन 1 ईयर मैचेस खेलने स्टार्ट किए और मैं मैचेस जीतने लगी और मुझे गोल्फ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए, इसलिए तब से मैंने गोल्फ स्टार्ट किया है।
4: बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आपने मेडल्स भी जीते हैं, आपने कितने मेडल्स जीते हैं अभी तक?
5: अभी तक मैंने अप्रोक्स 100 अराउंड मेडल्स ट्रॉफीज जीती है।
4: ओके, और आपकी रैंकिंग क्या है, श्रोताओं को बताएं?
5: मेरी रैंकिंग इंडिया में अपनी एज कैटेगरी में सेकंड है, और ओवरऑल इंडिया में नेशनल्स में मेरी रैंकिंग इन एवरी कैटेगरी लाइक सीनियर्स में मेरी 10th है, और वर्ल्ड रैंकिंग मेरी अभी 1600 है।
4: वेरी नाइस। आपने बहुत ही छोटी उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया, और जो हमारे लिसनर्स हैं उनको हम अगर थोड़ा बताना चाहें कि गोल्फ कैसे खेलते हैं, गोल्फ में क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए।
5: सबसे ज्यादा जो चीज मुझे अट्रैक्ट करती है गोल्फ के बारे में वो है कि गोल्फ में 14 तरह के क्लब्स होते हैं, 14 तरह के क्लब्स होते हैं, और हर क्लब का एक डिफरेंट रोल होता है।
4: क्लब का मतलब हम बैट से समझ सकते हैं?
5: हाँ, काइंड ऑफ।
4: जिस तरह से बैट से बॉल को हिट किया जाता है,
5: हाँ,
4: उसी तरह से जो गोल्फ का जो बल्ला होता है उसको क्लब कहते हैं।
5: हाँ, वो काफी डिफरेंट होता है। सो हर क्लब का एक डिफरेंट रोल होता है, लाइक बंकर्स भी होते हैं, मिट्टी होती है, अगर आपको उसमें से मारना है तो आपका क्लब डिफरेंट होगा। अगर ग्रीन होती है, अगर आपको ग्रीन के पास में से मारना है तो उसका क्लब डिफरेंट होगा। अगर आपको ग्रीन के ऊपर से मारना है तो उसका क्लब डिफरेंट होता है, जैसे उसको पटर बोलते हैं, ग्रीन के पास वाले को सैंडविच बोलते हैं। अगर बंकर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक कुछ ग्रीन के पास होते हैं जिनके लिए लॉब वेज यूज होता है, कुछ ग्रीन से काफी दूर होते हैं उनका डिफरेंट टाइप होता है, और जैसे कुछ नॉर्मली फेयरवेज होते हैं और ग्रीन में डिस्टेंस होता है, तो उनके अलग होते हैं. अगर आप रफ में से मार रहे हो तो उनके अलग होते हैं. आपको लो शॉट मारना है उसके लिए अलग है, आपको हाई शॉट मारना है उसके लिए अलग.
4: तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें इसमें हमें ध्यान रखनी होती है. इसके साथ जब हम गोल्फ खेलते हैं

0: तो हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है?
1: बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे पहले मैंने बोला डिफरेंट क्लब्स होते हैं, तो जैसे मान लो आपके ग्रीन और आपके शॉट में अराउंड 130 यार्ड्स का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो अब आपको उसके लिए पहले हवा चेक करनी पड़ेगी कि हवा हेड है टेल है। हेड मतलब कि अगर हवा पीछे की साइड आ रही है, टेल मतलब अगर हवा आगे लेके जा रही है। तो हवा का भी एक रोल होता है, अगर वो लेफ्ट टू राइट है या फिर वो राइट टू लेफ्ट है, तो उन सब का ध्यान देना पड़ता है। और फिर दूसरा वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, लाइक आपकी खुद की एडेजेस होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इतना आइडिया तो रहता है कि आपका हाँ इतना क्लब इतना जाता है। ये चैलेंजेस, फिर पटिंग, चिपिंग, बंकर, जैसे मैंने बताया मिट्टी से, सैंड से, नियर ग्रीन या फिर ग्रीन पे। और फिर अराउंड ये मैच 6 आवर्स चलते है, एक मैच 18 होल्स का, तो वही होता है आपकी स्टेबिलिटी, आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है।
0: अच्छा, जैसे धूप में खेलना होता है तो उसमें आप किस तरह से मैनेज करते हैं?
1: तो लाइक
0: 6 आवर्स तो काफी लंबा टाइम हो गया।
1: हाँ, जैसे बहुत ज्यादा समर्स होते हैं, लाइक अराउंड 35-40 डिग्रीज हम यूजुअली खेलते हैं, तो वो अराउंड पीक टाइम होता है हमारा जनरली 11 to 4 o'clock होता है। सो लाइक फुल पीक टाइम, तो उसमें हम लाइक वी हैव अम्ब्रेलाज होते हैं, तो हमारी जो ट्रॉलीज होती है उन पे अम्ब्रेला का स्टैंड बना हुआ होता है, या फिर हम जब वॉक करते हैं शॉर्ट्स के बीच में हम अम्ब्रेला ले लेते हैं। और फिर हम बहुत सारी चीजें जैसे वाटर, इलेक्ट्रोल्स, हमें वो सब कैरी करने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होती है और हमें बीच में लाइक रेस्ट नहीं मिलता है। आपको जो भी कंज्यूम करना है तो वो आपको चलते चलते ही कंज्यूम करना पड़ता है, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रोल हो गए, और बीच में जो होल्स होते हैं तो फिर मम्मा या कोई भी बीच में लाइक नींबू पानी या फिर कोई तरह का जूस दे देते हैं।
0: तो मम्मा आपको सपोर्ट करती हैं गेम में?
1: हाँ, काफी।
0: अच्छा,
1: मम्मा पापा दोनों का ही बहुत ज्यादा रोल है।
0: अच्छा, जैसा आपने बताया कि फिटनेस बहुत जरूरी है, तो फिटनेस के लिए आप क्या स्पेशल करती हैं, क्या ध्यान रखती हैं?
1: फिटनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गोल्फ में। तो मेरे कोच है सागर सर, वो चंडीगढ़ से है, तो मैं चंडीगढ़ जाती हूँ कोचिंग लेने उनसे। वो लाइक क्रिकेटर्स जैसे युवराज, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, उन सबको भी वही ट्रेन करते हैं फिटनेस में, एंड वो मुझे कार्ड दे देते हैं, फिर मैं जयपुर आके उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करती हूँ।
0: जैसे बहुत से बच्चे भी हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि कौन से रूटीन को आप फिटनेस के लिए फॉलो करती हैं जिससे वो भी सीख सकें या कोई प्रेरणा ले सकें?
1: मैं गोल्फ स्पेसिफिक रूटीन भी करती हूँ और नॉर्मल वर्कआउट रूटीन भी होता है मेरा, मोस्टली गोल स्पेसिफिक होता है, लाइक कोर, शोल्डर्स, लेग्स, बैक, क्योंकि गोल्फ में सबसे ज्यादा रोल कोर, बैक, शोल्डर्स, लेग्स, मतलब हर एक बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं गोल्फ स्पेसिफिक भी करूँ और हर बॉडी पार्ट को अच्छे से ट्रेन कर पाऊँ।
0: इसमें आप इतना समय देती हैं तो साथ में पढ़ाई भी करनी होती है, तो उसको कैसे मैनेज करती हैं?
1: मैं जनरली जयपुर में मैं उतना नहीं रहती हूँ बिकॉज मेरे नेशनल्स चलते हैं, तो मैं अराउंड 10 डेज ही रहती हूँ जयपुर में इन अ मंथ, बट जब भी होता है तब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्कूल जाऊँ। सो हाँ,
0: तो आपको तो फिर डबल मेहनत करनी पड़ती है।
1: हाँ, पढ़ाई में, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाता है, मैं काफी मेरा सिलेबस छूट जाता है, पर जैसे अभी एग्जाम्स है तो 1 मंथ काफी सारी पढ़ाई एक साथ करनी पड़ेगी।
0: स्पोर्ट्स से हमें वो कंसंट्रेशन की पावर मिलती है जिससे डिसिप्लिन सिखाता है स्पोर्ट्स हमें, तो हम कम समय में भी क्यूरिकुलम को कवर कर सकते हैं।
1: हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा आपको डिसिप्लिन सिखाता है, कंसिस्टेंसी स्पोर्ट्स में होना बहुत जरूरी है, सो वो सब स्पोर्ट्स आपको बहुत ज्यादा सिखाता है।
0: गोल्फ की बात करें, कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आप फॉलो करती हैं या जिनसे आप प्रेरित होती हैं?
1: सबसे ज्यादा मैं टाइगर वुड्स, रॉरी मैकलरॉय और स्कॉटी शेफलर। सो स्कॉटी शेफलर भी वर्ल्ड नंबर 1 है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, क्योंकि जिस तरह रॉरी मैकलरॉय, उनका जो बॉल स्ट्राइकिंग का जो वे है, उनका जो फोकस है, कि जिस तरह वो मैचेस खेलते हैं, उनका जो डिसिप्लिन है, वो सब मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। इंडिया के प्लेयर्स शुभांकर शर्मा एंड आदित्य अशोक दी, दोनों मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, और अनिर्बान लहरी सर, तीनों मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं।
0: कौन कौन से कंट्रीज में आपने खेला और इंडिया को रिप्रेजेंट किया?
1: मैंने इंडिया को थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, इन सारी कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। और मैंने थाईलैंड में 3 to 4 टूर्नामेंट्स खेले, थाईलैंड में लाइक डिफरेंट सिटीज जैसे चियांग में, बैंकॉक, और हुआ ही इन तरह की कंट्री सिटीज में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है।
0: ओके, इसके अलावा भी कोई आपकी हॉबीज हैं?
1: जनरली तो उतना नहीं टाइम मिल पाता हॉबीज को, बट मेरी हॉबीज है डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड लॉन्ग टेनिस।
0: करियर अपॉर्चुनिटीज को आप किस तरह से देखती हैं और अपने आप को आप कहाँ देखती हैं आज के टाइम में?

0: मेरे को इंडिया के लिए गोल्फ में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है, और मैं वही अपने आप को स्टैंड करती हूँ और मैं वही चाहती हूँ।
1: जब लक्ष्य का हमें पता होता है और बहुत ही छोटी उम्र में हमारा प्रयास भी उसी दिशा में होता है। चलते चलते आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हमारे जो श्रोता हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज के तौर पे कहना चाहेंगे?
0: मैं कहना चाहूंगी कि आपका जिस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग होता है, किसी का बैडमिंटन में, किसी का गोल्फ में, किसी का लॉन टेनिस में, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आपको वही स्पोर्ट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज को बिना मन से करोगे तो वो चीज नहीं हो सकती। गोल्फ मेरे लिए सब कुछ हो चुका है, तो हाँ,
1: हमारी शुभकामनाएं आपके साथ यही हैं कि आप गोल्फ में आगे से आगे बढ़ते जाएं और इंडिया को रिप्रेजेंट करें।
0: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे गोल्फ खिलाड़ी शिक्षा जैन से डॉक्टर गौरव यादव की बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र जयपुर का अंशदान था। अब हमें आज्ञा दीजिए, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

हसीना मान जाएगी। इस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार अख्तर रोमानी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अंजाम फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है सुमन कल्याणपुर और मुकेश ने, संगीत है गणेश का और बोल लिखे हैं अख्तर रोमानी ने।

आई श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं बहारों की मंजिल फिल्म का गीत। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

आइए अब आपको शैलेंद्र का लिखा ये गीत सुनवाते हैं फिल्म छोटी सी मुलाकात से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: श्रोताओं, दो कलियां फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव

0: और लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been conferred. Honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola Ropeway were rescued safely after a major technical snag.